इंसान की एक बड़ी विशेषता है उसके विचार करने की क्षमता, जो दूसरे परजीवियों में नहीं पाई जाती है। जानवर भी पैदा होते हैं, खाते पीते हैं और एक उद्देश्यहीन जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इंसान जीवन की ऊंचाइयों को छूकर अपनी जाति और मानवता की सेवा करते हुए श्रेष्ठ जीवन जीता है। विचार करने की जो अनोखी क्षमता मानव को मिली है, इसका सही ढंग से उपयोग कीजिए। ऊंची सोच रखिए, आगे बढ़िए। यदि आप कुतुब मीनार के पहले माले से चारों ओर देखते हैं, तो आपको कूड़ा करकट यानी अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर के माले से चारों ओर देखते हैं, तो सुंदर सुंदर इमारतें दिखाई देती हैं। खराब चीजें आपकी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। इसी प्रकार हमें अपने विचार और आचरण को हर रोज ऊंचा उठाना चाहिए, ताकि हमारा नजरिया उत्तम और व्यवहारिक बनता जाए और हम अच्छे जीवन के लिए उदार और सहनशील बन सके। अच्छा सोचेंगे तभी फल अच्छा होगा।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारे आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2026 जुलाई महीने का गुरुवार दिन और तारीख है 16। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक तीतांगजांग और तकनीकी अभियंता पीश शर्मा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 में दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए गालो डायलेक्ट न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में।

6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी। 7:10 सुनिए अपताने दैलिक न्यूज। 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फरटेनमेंट प्रोग्राम, जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में।

7:45 सुनिए तागिन दालिक न्यूज। 7:40 पेश है सदाबहार सूदिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8 बजे सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार।

8:15 रहे का मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में, 8:23 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ, 8:40 सुने हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स।

9 बजे फिर से हिंदी न्यूज, 9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10। एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप, जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें।

0: 10:10 शुरू होकर रेडियो डिमांड जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: खाना चाहिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रूपये की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रूपये प्रति सीट था, अब यह घटकर 12,000 से 15,000 रूपये हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल

0: संगठनों के वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Union Cabinet approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. The minister said the cabinet also cleared the mobile manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub. The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The cabinet also gave nod to two multi-tracking projects covering 4 districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. It also approved the National Investment Policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab tomorrow. The Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. Mr. Modi will lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings, elder brother Lord Balabhadra and younger sister Devi Subhadra, will begin today at Puri in Odisha. During the annual festival of Rath Yatra, Lord Jagannath and his two siblings give darshan to the public in the chariots and visit Gundicha Temple, revered as maternal aunt's abode of Lord Jagannath. The Yatra, which starts from the Puri Temple, will end at the Sri Gundicha Temple, covering a distance of nearly 3 kilometers. Multi-layer security arrangements have been put in place to ensure the smooth conduct of the festival. Delhi's iconic Red Fort complex has been closed to the public till the 80th Independence Day celebrations on 15th of August. An order in this regard has been issued by the Archaeological Survey of India in view of the ongoing preparations for the Independence Day celebrations at the complex. A senior ASI official said that such orders are issued every year ahead of Independence Day. The first international flight service from Madhya Pradesh has been launched. Chief Minister Dr. Mohan Yadav flagged off the first direct flight from Indore to Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. Speaking on the occasion, the Chief Minister said that Prime Minister Modi had always believed that even a common man should be able to fly. The state's aviation policy has been built on this very idea. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-EU Trade and Technology Council meeting will take forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU FTA, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. The minister made this statement to the press after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels yesterday. He said that India and the EU have a natural affinity. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal also described the India-EU FTA as fair, equitable and balanced, which is a win-win agreement for every sector in both nations. Highlighting the discussions during the meeting, he said that they shared a vision for an innovation-driven, trusted and future-ready growth partnership. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in US to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th minute. Argentina's Enzo Fernandez equalised in the 85th minute and Lautaro Martinez struck in the 90th minute to complete a dramatic 2-1 comeback victory for Argentina. Now Argentina will play against Spain in the final on Sunday night. In men's cricket, second one-day international of three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. Earlier, India defeated hosts England by 6 wickets in first ODI at Edgbaston in Birmingham on Tuesday to lead the series 1-0. And that is the end of this news bulletin.

गुड मॉर्निंग ईटानगर। तो दोस्तों, इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ। दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत पेश है, भक्ति गीत सुरेश वादकर जी की आवाज में।

0: क्योंकि ये आकाशवाणी चैनल का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से अब आप सुन पाएंगे।
1: जी की आकाशवाणी तानगर है तानगर तमरो काम पे तेनलो पोलो के लोरी गोला लोक नानक है मैं द्वारा चुको गलो मिंके नाग में मिंजी दू मिंके नाग में मिलने जी नंगो जुम तो लंब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का दे मिनिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अरालो अरुणाचल प्रदेश का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा पे इन्हें ने लुचिर ऑक लुयो पोलो के अरालो 19.03 करोड़ मुर्को एम एनईसी सोनिक ऑक नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम NESIDS अरालो हेल्थ केयर एजुकेशन टूरिज्म लाइवलीहुड ओके बदु बदा अबा लगा पांडम जिलिकतु जो के प्रोजेक्ट इनिशिएटिव अरालो यिंकियोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लो नर्सिंग हॉस्टल दोनीपोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकु वेस्ट चांग लो गर्ल्स हॉस्टल सपारिजो लो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स दिरांग लो पार्सिमुन प्रोसेसिंग सेंटर ओके कारसांग लो सुपर मार्केट कम पार्किंग फेसिलिटी एम मोदोब इनिशिएटिव अरालो जिलिकतु राज्यसभा एमपी ताई तगाक स्टेट लोक रिदून देदिर रचक जिपू जिलिन रिनाम एम 1950 लोक मोदी मोव रिनाम एम चिन मजाया बे हिंदिर कासो एम स्टेट का गुमिन एम हेमोदुकुने अला मेंदुला सेंटर एम ने स्पेशल सेंट्रल प्लाट रिलीफ पैकेज एम जिलेन नाम लगा बे मेंतु मीडिया एम ने कारक जिदुला नर्म तगाक मु अरुणाचल लो 85,000 हेक्टर गोबे इजिरिक एम मोदिर तुकु ओक अरुणाचल का 28 डिस्ट्रिक्ट अरालो 1 लेक येन्ने गोब फैमिली नंबर उम तुम एम हिंदिर कासो एम हेल्ला दोदू कुने अला मेंदुला सेंट्रल गवर्नमेंट एम ने बुवा व बदु बदा मेडिकल फैसिलिटी लगा बे कादुम तादुम रिनाम लगा बे मेंतु अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट केन लो इंडिया लो के पास 500 किलोवाट रिवर किनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट एम इंडिया नॉर्वे ग्रीन पार्टनरशिप अरालो नॉर्वे का टाइडल सेल एस कंपनी अला सेंटर फॉर आर्ट साइंस एंड हिमालयन स्टडीज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है एमओयू एम साइन दूला केन लो गाले आलो लो इम्प्लीमेंटेशन एम मतु जकने अगर रिनाम अतरु व बिल्डिंग प्रोजेक्ट मोकु माब जिबू एम जिबू गे इजी करेन लोक इलेक्ट्रिसिटी एम लादूला होदो व दूलुग ने दोलू नम एम सुविधा पानम लगा बे मतु साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर दसांगो पुल जकन इनिशिएटिव रिनाम एम स्टेट ग स्टेट लो युव नागो ब रिलेंका एला मेंतु ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपसू का द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्टेट लोक स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू SIR रिनाम एम कारादो मुनुगा 8 मेंबर को कमिटी बे मोलेंतु कमिटी के चेयरमैन बे वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल नाबंग गांधी ने डालेंतु आपसू कमिटी का द डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ऑक लोकल स्टेक होल्डर का द मिले दूला SIR इम्प्लीमेंटेशन एम स्टेट लो अल्लू बे प्री एंड पियर बे रिले मोनाम लगा बे मोलेंतु नम एला मेंकें जितु तनगत नुनमेंकेन अगुमम आकाशवाणी इतानगर लोक तपादु डेप्यूटी कमिश्नर कुरुंकुबे चेचोंग चुकु ओक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गद दामिन हुरी लो जिपु जिलिन रिदाग लोक जोम लाले ला इन्नम कादुला 85 आरसीसी टीम ओक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गद रेस्टोरेशन प्रोग्राम रिदुला निदोदो दुब जिपो लोक जोम मोल जितु एला मेंकेन जितु इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ओक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च गादे 2023 लोक लीरेप गनाम तापुम तारुक दोमानाम डिजीज रेसिस्टेंट आरकाबे टोमेटो लोअर सिबनश्री मोको लोक पार्मर एम पक्का बलीपा मधु एला मेंतु आरकाबे टोमेटो पर हेक्टर लो 70-75 टन एम लीपा दूला पार्मर एम पुलेन पाले मधु ने एला ICAR टीम मिंकें जितु पीपा वर्ल्ड कप 2026 ग सेमीफाइनल मैच एम मरो स्पेन अला फ्रांस डलास स्टेडियम टेक्सास US लो तुका मिंजितु स्पेन फ्रांस एम 2-0 लोक तुपाक दुला फाइनल लो चालक तुकु ओक सेकेंड सेमीफाइनल मैच एम अर्जेंटीना इंग्लैंड एम 0 एटलांटा स्टेडियम लो 2-1 लोक तुपाक दुला फाइनल लो चालक तु अर्जेंटीना का कैप्टन लियोनेल मेसी पिनिगो गोल असिस्ट एम जितुला सुपीरियर मैच ऑफ द अवार्ड एम पातु वर्ल्ड कप फाइनल 2026 एम स्पेन अला अर्जेंटीना न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम लो जो के पोलो के चामनी आलो लो 12:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लो तुका मिंजे तदु मेट्रोलॉजिकल सेंटर इटानगर अरुणाचल प्रदेश के 18 डिस्ट्रिक्ट एम येलो अलर्ट गो कातम दूला हार ने समय लो दोगुम दौरा के अचिरु बर दे दू अला मेंतु ओके पकुम परे डिस्ट्रिक्ट एम ने ऑरेंज अलर्ट गो कातम दूला हार ने समय लो ICAR रीजन लो दोगुम दौरा निदो को दे अचिरु बे हो दे दू अला मिंकें जितु के तनगद जीरो गंगुनु गालो मिंकें अगम अगे। तने का दे काजुंगुन इज्जा रेडिक कार लोग है लोग है

नमस्कार दोस्तों, अभी अभी आपने सुनी कालो भाषा में समाचार प्रसारण और अब शुरू हो रहा है हमारा रोजाना का सेहत और सकारात्मक सोच से भरपूर कार्यक्रम सुबह सवेरे में। मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू और अगले कुछ देर तक हम साथ मिलकर इस प्यारी सी सुबह को और भी खूबसूरत बनाएंगे। कहते हैं कि अगर सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। शायद इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि दिन की शुरुआत जल्दी उठकर खुली हवा में कुछ देर चलने और प्रकृति के साथ कुछ पल बिताने से करनी चाहिए। आज की तेज रफ्तार जीवन में हम सब अपने काम, पढ़ाई, घर और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि सबसे जरूरी चीज यानी अपनी सेहत को ही पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक हर सपना, हर जिम्मेदारी और हर खुशी का अपना ही मजा है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे योगा की, हल्का फुल्का व्यायाम की, सांसों की अहमियत की और उन रोजाना की आदतों की जो धीरे धीरे हमारे शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाती हैं। सुबह का समय हमारे शरीर के लिए बहुत खास माना जाता है। इस समय हमारे दिमाग रात भर के आराम के बाद बिल्कुल ताजा होता है। शरीर भी धीरे धीरे अपनी दिनचर्या के लिए तैयार हो रहा होता है। बहुत से लोग उतने ही तुरंत मोबाइल देखने शुरू कर देते हैं। मैसेजेस, सोशल मीडिया या खबरें देखते ही दिमाग पर एक साथ बहुत सारी जानकारी का बोझ पड़ने लगता है। अगर इसकी बजाय हम सिर्फ 5 या 10 मिनट अपने लिए निकाल दें, खिड़की खोलकर ताजी हवा में गहरी सांस लें, आसमान की तरफ देखें, पेड़ पौधों की हरियाली को महसूस करें, तो दिमाग को एक प्राकृतिक शांति मिलती है। इसी दिन की शुरुआत भी हल्कापन लेकर आती है और तनाव भी कम महसूस होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि योगा का मतलब सिर्फ मुश्किल आसान करना है, लेकिन असल में योगा का अर्थ है शरीर, सांस और मन के बीच संतुलन बनाना।

मिलते हैं। इससे तनाव कम होता है, दिमाग शांत रहता है और ध्यान लगाने की क्षमता में भी सुधार आता है। रोज सिर्फ 5 मिनट का ये अभ्यास धीरे धीरे आपको अंदर से हल्का और शांत महसूस करवा सकता है। दोस्तों, एक और बात जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है हमारी चलने और बैठने की आदत। दिन भर अगर हम गर्दन झुकाकर मोबाइल देखते रहे या कंप्यूटर के सामने बिना सीधे बैठे काम करते रहे तो धीरे धीरे गर्दन, कंधों और कमर में तनाव जमा होने लगता है। इसलिए हर एक घंटे में सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी कुर्सी से उठ जाइए, कंधों को धीरे धीरे आगे और पीछे घुमाइए, गर्दन को बिना झटका दिए दाएं और बाएं मोड़िए, हाथों को ऊपर लेकर पूरे शरीर को हल्का सा स्ट्रेच कीजिए। यह सिर्फ 1 मिनट का अभ्यास है लेकिन इसका असर पूरे दिन महसूस किया जा सकता है। याद रखिए, शरीर को एक ही स्थिति में बहुत देर तक रखना उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत बात के साथ वक्त हो चला है एक मधुर गीत का। गीत सुनिए, मुस्कुराइए और अगर आप घर पर है तो हल्का सा चलना या स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल ना भूलिए। लीजिए, पेश है आज का पहला गीत।

एक बार फिर स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके अपने आरजे याजू। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं और वो है हमारे पैर। हमारा पूरा शरीर दिन भर इन्हीं पैरों पर टिका रहता है लेकिन इनकी देखभाल हम सबसे कम करते हैं। सुबह उठकर जब हम 2 या 3 मिनट नंगे पैर किसी साफ और सुरक्षित जगह पर धीरे धीरे चलते हैं तो पैरों की छोटी छोटी मांसपेशियां सक्रिय होने लगती है। पैरों की उंगलियों को धीरे से मोड़ना, फैलाने और इरियों को हल्का सा उठाकर नीचे लाना भी एक अच्छा अभ्यास माना जाता है। इससे पैरों में रक्त संचार बेहतर होता है और चलने में भी हल्कापन महसूस होता है। अब जरा घुटनों की बात करते हैं। बहुत से लोग सीधे तेज चलना या दौड़ना शुरू कर देते हैं लेकिन घुटनों को पहले तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। सीधे खड़े होकर एक घुटने को धीरे से मोड़ना और सीधा करना बिना किसी झटके के जॉइंट्स को धीरे धीरे गर्म करता है। इसके बाद अगर आप चलने या व्यायाम की शुरुआत करते हैं तो शरीर ज्यादा आसानी से उसका साथ देता है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि व्यायाम करते समय अगर तेज दर्द महसूस हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। शरीर हमेशा संकेत देता है और उन संकेतों को समझना भी सेहतमंद जीवन का एक हिस्सा है।

दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर कितनी बार बिना सोचे समझे सांस रोक लेते हैं? कभी कंप्यूटर पर काम करते हुए, कभी किसी मुश्किल काम में ध्यान लगाते हुए, या कभी तनाव के समय। इस आदत का हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए दिन में दो या तीन बार सिर्फ एक मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान देने की आदत डालिए। न सांस को जबरदस्ती लंबा कीजिए और ना ही रोकने की कोशिश कीजिए, बस उसकी प्रकृति घटी को महसूस कीजिए। यह छोटा सा अभ्यास मन को शांत करने में बहुत मदद करता है। और अब वक्त है एक और प्यारे गीत का। गीत का आनंद लीजिए। हम कुछ ही पलों में फिर लौटेंगे सेहत और सकारात्मक जीवन से जुड़ी और भी रोचक बातें के साथ।

दोस्तों, इसी मधुर गीत के साथ हम पहुंच गए हैं आज के सुबह सवेरे के अंतिम पड़ाव पर। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आज के इस सफर में योगा, व्यायाम और सेहत से जुड़ी जो बातें हमने साझा की, उनमें से कुछ ना कुछ जरूर आपके काम आएगा। याद रखिए, अच्छी सेहत किसी एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं होती, ये रोजाना की छोटी छोटी आदतों से बनती है। रोज थोड़ा सा चलना, कुछ देर शरीर को स्ट्रेच करना, गहरी सांस लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त नींद लेना, इन्हीं छोटी बातों का योग हमारे जीवन को स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरपूर बनाता है। अपने लिए रोज कुछ पल जरूर निकालिए, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहते हैं तब ही अपने परिवार, अपने काम और अपने सपनों को पूरी ऊर्जा के साथ जी पाते हैं। इसलिए अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज मत कीजिए, छोटी शुरुआत कीजिए लेकिन उसे रोजाना की आदत बना दीजिए। इसी शुभकामना के साथ मुझे यानी अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगलमय हो, स्वास्थ्य हो, खुशियों से भरा रहे। यह आकाशवाणी टानर करण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, पर जाने से पहले आपके लिए ये आखिरी गीत छोड़ के जा रही हूँ और इसी गीत के बाद आप सुन पाएंगे अपतानी भाषा में समाचार।

Si Akasbani Itanagar sisi tanupuila bushai mi mulimbuli suro nunu kapepa tanupumi tapakendo suro pumi lukolin si dan nobing. Donar ministri ke dali hok Northeastern Council NEC hu Arunachal Pradesh ka development kam lindan pa inekun mela jun pulo ho ajayala kwae crore la henge lakh tako yanu mi bilin la mutu osaka tako yanu hu scheme of NEC सोनेक ला नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम नेसीद के दली होक बिलीनला मत होसका पांत कोला यिंगचोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो नर्सिंग हॉस्टल दोंगपोलो गवर्नमेंट कॉलेज हो गर्ल्स हॉस्टल सपारेजो हो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स दिरांग हो पर्सिमम प्रोसेसिंग सेंटर ला खरसांग हो सुपर मार्केट कम पार्किंग फैसिलिटी उदय आतामी पुननला मकिंदो हो एनईसी हु नाचो बैकवर्ड ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मी पुन नन पाला ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल मी सोगनन पत्र पांत को मी बिनीला मुत राज्यसभा एमपी ताई तगाक अरुणाचल प्रदेश होका सिपुंका मुदोयसी लका मुझे मैन मी कल्यांकादा ननपा सेंट्रल गवर्नमेंट मी स्पेशल सेंट्रल प्रोड रिलीफ पैकेज मी बिदोपा लोला मुत सिपुंका मुदोयसी लका मुझे मैन हु 1950 अन्या होका म्योबोला मुझे होका मुझे मैन मलामी अनो ओरो या पालिरो हला पुस्तले लानबो अतामी कोलो ट्यूसडे आलो हो लुकोला मुते होसिस लेपा जर पिंच खंगेला जरगोए हेक्टर्स अजियापियो अतामी मुझे मेतोला दो हला हो निखाहेला पिंये डिस्ट्रिक्ट अता होक मी खकुंग पास हला अकोलाख पाले उरु अतामी मुझे मेतोला दो हला लुकोला मुदो हो तगाक स्टेट कोंतिका तकोयानेला सका मुदु मुयुने अतामी मुतिलाकिन कुमा हला होपा सेंटर गवर्नमेंट मी लिम्बोसा अतामीला दुलुन यादु तोला दोन अतान चिकामी अनो तुनुपा मुतबिला कलंकादाला मुदोपा लुला मुते कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हे दामिन होली लिम्बो होका दुलुंग कोने मिका सका पुलो का लोजाइने हने आरो होका यसी बोबला का मनमी नीतिन दुलुंग कोने मी मलु बिजाते हला लुकोला मुदो सका कामी डिप्टी कमिश्नर चिचुंग चुहु 85 आरसीसी ऑफिसर कमांडिंग अगि हो दावला अनो तुनुपा मगला मते हो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हे क्विक रेस्पॉन्स टीम कोने मलामी दामिन हुरीला पर्सी पर रहो इला नम कने काय अब पना मुझे मेला मुतन हमी ककर कादर किन दुपा कनीला मुत इंडिया नॉर्वे ग्रीन पार्टनरशिप का लिम्बो हो अरुणाचल प्रदेश हे नॉर्वेजियन का पार्म टाइडल सेल एस अगि हो लंगो है किलोवाट रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट मी पुदुपा एमओयू कोने मी टीप साइन मुसला मुत होसका एग्रीमेंट मी सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश ला टाइडल सेल एस नी क्लेबिला दोन होक काय तिबेपा मशीन उदे मी पुमापा इलेक्ट्रिसिटी मी पुनिंदो

नमस्कार आप सभी को आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू। अभी अभी आप सुन रहे थे आपातानी दैलिक में हमारा न्यूज बुलेटिन और अब वक्त हो चला है हमारे स्पेशल मॉर्निंग इंफरटेनमेंट प्रोग्राम का, जहां हम बात करते हैं आज के दिन के मायने, कुछ इतिहास के पन्नों और आज के ताजा खबरों की। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। सबसे पहले नजर डालते हैं ग्लोबल हिस्ट्री पर, यानी दुनिया के इतिहास में आज के दिन क्या खास हुआ था।

आज ही के दिन 1945 में दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किया गया था न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में। इस प्रोजेक्ट का नाम था ट्रिनिटी टेस्ट। इंसान की चांद पर पहली दौड़ आज ही के दिन 1969 में नासा ने अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और उनकी टीम चांद के सफर पर निकले थे।

जेडी सलिंगर की लिखी मशहूर किताब आज ही के दिन 1951 में पब्लिश हुई थी, जिसने आगे चलकर वर्ल्ड लिटरेचर का चेहरा बदल दिया। जापान के निगेदा रीजन में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसने वहां की न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी को काफी प्रभावित किया था और डिजास्टर मैनेज को लेकर पूरी दुनिया को अलर्ट किया था। दोस्तों, अगर इस ग्लोबल हिस्ट्री पर गौर करें तो लगता है कि 16 जुलाई का दिन इंसानी ताकत और उनकी खोज का एक बड़ा गवाह रहा है। एक तरफ जहां हमने न्यूक्लियर एनर्जी की तबाही का पहला कदम देखा, वहीं दूसरी तरफ चांद को छूने का हौसला भी दिखाया। इतिहास हमें यही सिखाता है कि ताकत का सही इस्तेमाल ही इंसानियत को आगे ले जाता है। चलिए, अब वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, फिर लौटेंगे इंडिया के इतिहास के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर पर कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। चलिए अब देखते हैं हमारे प्यारे देश भारत के इतिहास में आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। भारत की आजादी की लड़ाई के एक मजबूत स्तंभ अरुणा असफ अली जी का जन्म आज ही के दिन 1909 में हुआ था। उन्हें 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराने के लिए याद किया जाता है। भारत ने सोलर साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम बढ़ाया था 1981 में, जब उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी से पहली बार एडवांस सोलर ऑब्जर्वेशन शुरू की गई थी। देश में खेती और किसानों की प्रगति के लिए ICAR के फ्रेमवर्क को आज ही के दिन 1968 में का एक नया और विशाल रूप दिया गया था, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में मदद की। तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक बेहद दुखद स्कूल फायर हादसा हुआ था 2004 में, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इसके बाद से पूरे देश में स्कूल्स में सेफ्टी गाइडलाइंस को सख्त किया गया। भारत का इतिहास हमें जज्बा भी देता है और सीख भी। जहां अरुणा असफ अली जी का जन्मदिन हमें देशभक्ति की याद दिलाता है, वहीं कुंभकोणम जैसे दुखद हादसा हमें ये याद दिलाता है कि हमारे बच्चों की सेफ्टी हमारे सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलिए एक और गाना सुनते हैं और इसके बाद सीधे चलेंगे हमारे स्टेट की ताजा खबरों पर, जो आज के अरुणाचल टाइम्स के पन्नों से निकल कर आई है।

आपका स्वागत है फिर से। अब वक्त है हमारे स्टेट की सुबह की गरम गरम खबरों का। आज की अरुणाचल टाइम्स में क्या कुछ हेडलाइंस बनी है आइए जानते हैं। APDCA PL टू इम्प्लीमेंट कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल। हमारी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अब स्टेट में कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने जा रहा है। यह हमारे एनवायरमेंट और ग्रीन एनर्जी के लिए एक बेहतरीन और बड़ा कदम है। APYS6 इंक्वायरी इन पुरोइक ऑटोनोमस बोर्ड फंक्शनिंग। अरुणाचल पुरोइक यूथ एसोसिएशन ने पुरोइक ऑटोनोमस बोर्ड की फंक्शनिंग और कामकाज को लेकर एक इंक्वायरी की मांग की है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एडमिन प्रोहिबिट्स SUPs प्लास्टिक वाटर बॉटल्स बिलो 2 लीटर इन वेस्ट कमिंग। वेस्ट कमिंग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। वहां अब सिंगल यूज प्लास्टिक और 2 लीटर से कम की प्लास्टिक वाटर बॉटल्स पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है ताकि नेचर को बचाया जा सके।

फर्स्ट ईएनटी सर्जरीज। बोमडिला के जनरल हॉस्पिटल ने एक नई कामयाबी हासिल की है। वहां पहली बार ईएनटी की सफल सर्जरीज कंडक्ट की गई है, जो कि वहां के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मिनिस्टर्स अर्जेस थीसिस टू एक्सपेडिट प्रोसेस फॉर क्रिएशन ऑफ फोर न्यू म्यूनिसिपैलिटीज। हमारे मिनिस्टर ने सभी डिप्टी कमिश्नर से गुजारिश की है कि स्टेट में चार नई म्यूनिसिपैलिटीज बनाने के प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि अर्बन डेवलपमेंट और अच्छी तरह से हो सके। खबरें तो सारी ही बड़ी है, पर वेस्ट कमिंग एडमिनिस्ट्रेशन का प्लास्टिक पर यह बैन लगाना सच में एक जिम्मेदार कदम था। तो दोस्तों, आज के इस मॉर्निंग इंफरटेनमेंट प्रोग्राम में बस इतना ही। इसे प्यारी सी सुबह को और प्यारा बनाते हैं हमारे अगले कार्यक्रम के साथ। यह आकाशवाणी जानकर का अरुण FM 103.1 MHz है।

गुड मॉर्निंग ईटानगर, आप सभी को आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू। अभी अभी आप सुन रहे थे तागिन दालिक में हमारा न्यूज बुलेटिन, और अब वक्त हो चला है एक ऐसे प्रोग्राम का जो गुजरे जमाने की यादों को ताजा कर देती है। जी हाँ, शुरू करने जा रहे हैं आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम सदाबहार, एक ऐसे सफर जहाँ पुराने गीतों की मिठास होगी और यादों का एक खूबसूरत सिलसिला होगा। तो चलिए इस सुहाने सफर की शुरुआत करते हैं इस पहले सदाबहार नगमे के साथ।

अगर आप सुबह सुबह घर से निकल रहे हैं तो ये मौसम का हाल आपके बड़े काम आने वाला है। आईएमडी ईटानगर के मुताबिक आज ईटानगर का आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा। दिन भर में आपको एक या दो बार हल्की से लेकर मध्यम बारिश का थंडर शावर देखने को मिल सकते हैं। आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर यानी अधिकतम तापमान है वो तकरीबन 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। वही जो मिनिमम टेम्परेचर यानी न्यूनतम तापमान है वो सुबह के वक्त 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही हवा में नमी यानी रिलेटिवली ह्यूमिडिटी की बात करें तो सुबह के वक्त ये 72% तक काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, जो शाम होते होते 68% तक ड्रॉप हो सकती है। तो कुल मिलाकर आज कैपिटल में थोड़ी उमस के साथ साथ सुहानी बारिश की बूंदे आपको देखने को मिलती रहेगी। चलिए मौसम की इस बाती के बीच और सुनहरे गाना सुनते हैं और फिर चलेंगे पूरे अरुणाचल के मौसम के हाल पर।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों आइए अब बात करते हैं हमारे पूरे स्टेट यानी ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश के मौसम की डिटेल फोरकास्ट के बारे में जो आईएमडी डिपार्टमेंट ने जारी की है। हमारी स्टेट ज्योग्राफिकल ग्रुप से बहुत बड़ा है, इसीलिए अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज भी अलग है। आईएमडी के अनुसार पूरे अरुणाचल प्रदेश में मॉनसून काफी एक्टिव चल रहा है। स्टेट के लगभग बहुत सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि आज के लिए आईएमडी ने आइसोलेटेड प्लेसेस यानी कुछ खास और चुने हुए इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की भी वार्निंग्स है। अगर आप हमारे पहाड़ी रास्तों पर ट्रैवल कर रहे हैं जैसे तवांग, बोमदिला या जीरो की तरफ, तो थोड़ा संभाल कर निकले क्योंकि ऐसी भारी बारिश में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। तापमान की बात करें तो स्टेट के मैक्सिमम टेम्परेचर में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पहाड़ी और ऊंचे इलाकों में मौसम काफी ठंडा और सुहाना रहेगा, जबकि निचले इलाकों में बारिश के बाद थोड़ी उमस बनी रह सकती है। अगले 5 से 7 दिनों तक स्टेट में इसी तरह बारिश का सिलसिला रुक रुक कर चलता रहेगा। तो हमारे किसान भाइयों के लिए खेती के इलाज से पानी की कोई कमी नहीं होने वाली है, बस आप सभी को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो दोस्तों मौसम की जानकारी के बाद अब वक्त हो चला है सुहाने सफर को आगे बढ़ाने का इस आखिरी और बेहद खूबसूरत सदाबहार गीत के साथ। मैं हूं आपकी आरजी याजू, आप सभी का दिन शुभ हो और आप सुरक्षित रहे। सुनते रहिए आकाशवाणी अरुण एफ एम। दोस्तों इस गीत के बाद आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार। तब तक के लिए लुफ्त उठाइए ये गीत।
3: क्या आप अपने तमाशे के लिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
1: सेमिकॉन 2.0 127,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंडा जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
5: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी

0: के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
1: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ हैं महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी। ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार

0: दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू। अभी अभी दिल्ली और शिलोंग से हमारा नेशनल और रीजनल न्यूज बुलेटिन खत्म हुआ है और अब वक्त हो चला है आप सभी का पसंदीदा सेगमेंट, जी हां, वेलकम टू हेलो ईटानगर, एक ऐसा सफर जहां हम बातें करते हैं, सीखते हैं और कुछ कमाल की जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
1: हेलो ईटानगर।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर, सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। आज के दिन 16 जुलाई 1950 को फुटबॉल इतिहास का एक सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। उरुग्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता। इस मैच को आज भी माराकानासो यानी द माराकाना ब्लो के नाम से याद किया जाता है और इसे फुटबॉल के इतिहास के सबसे बड़े अपसेट्स में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस मैच के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उस साल कोई नॉर्मल नॉकआउट फाइनल नहीं था, बल्कि एक राउंड रॉबिन ग्रुप चल रहा था जहां ब्राजील को चैंपियन बनने के लिए सिर्फ एक ड्रॉ यानी एक पॉइंट की जरूरत थी। ब्राजील के लोग और वहां का मीडिया इतना कॉन्फिडेंट था कि मैच शुरू होने से पहले ही न्यूज़पेपर ने हेडलाइन छाप दी थी, हियर आर द वर्ल्ड चैंपियंस। यहां तक कि फीफा के प्रेसिडेंट जूल्स रिमेट ने भी पहले से ही पोर्चुगीज लैंग्वेज में ब्राजील के लिए अपनी कंग्रेचुलेशन स्पीच तैयार कर ली थी। स्टेडियम में ऑफिशियली लगभग 1,74,000 लोग थे, पर कहा जाता है कि असली संख्या 2,00,000 से भी ज्यादा थी। जब 47th मिनट में ब्राजील ने पहला गोल दिया तो पूरा स्टेडियम झूम उठा, पर उरुग्वे के कैप्टन ओब्दुलियो वेरिला ने एक चालाक दिमाग लगाया। उन्होंने जानबूझकर रेफरी से लंबी बहस शुरू कर दी थी ताकि ब्राजील की पब्लिक का शोर और एक्साइटमेंट थोड़ा ठंडा हो सके, और उनका ये प्लान काम कर गया। उरुग्वे ने पहले इक्वलाइजर दिया और फिर मैच के 79th मिनट में एलसिस गिगिया ने वो हिस्टोरिक विनिंग गोल किया जिसने पूरे 2,00,000 लोगों के स्टेडियम में ऐसी खामोशी ला दी जो आज तक फुटबॉल हिस्ट्री में सुनी नहीं गई। गिगिया ने सालों बाद एक बड़ा मशहूर दावा किया था कि दुनिया में सिर्फ 3 ही लोग हैं जिन्होंने अपनी एक हरकत से मैराकाना स्टेडियम को बिल्कुल खामोश किया है, फ्रैंक सिनात्रा, पोप जॉन पॉल II और मैं। इस हार कर ब्राजील पर इतना गहरा इमोशनल असर पड़ा कि उन्होंने अपनी पुरानी व्हाइट जर्सी को हमेशा के लिए बदल कर वही आइकॉनिक पीली जर्सी अपना ली जो हम आज देखते हैं। वैसे दोस्तों, इतिहास की बातें तो होती रहेंगी, पर क्या आप लोग अभी चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 को फॉलो कर रहे हैं? इस बार आप किस कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली मैं पोर्टुगल को रूट कर रही थी, पर बदकिस्मती से वो लोग हार गए। सच बताओ तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस तरह उदास देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप मैच था और हम उन्हें और खेलते देखना चाहते थे। खैर, जो भी हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज स्ट्रिक्टली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम। जो लेगेसी उन्होंने बनाई है उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मुझे याद है जब मैं छोटी थी मैं लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी, क्योंकि तब लड़कियां ऐसे स्पोर्ट्स कम ही खेलती थी। पर मैं एक स्पोर्टी गर्ल थी तो मुझे हर तरह के खेल पसंद थे और फुटबॉल तो मेरा फेवरेट था। जब भी फुटबॉल शब्द कान पे पड़ता था तो सबसे पहले दिमाग में रोनाल्डो का ही नाम आता था। आई गेस हर मिलेनियल और जेंजी ने ये फील किया होगा। पोर्चुगल भले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, पर रोनाल्डो ने अपना बेस्ट दिया। चलिए दोस्तों, अब जब पोर्चुगल बाहर हो चुकी है तो आप लोग किसके तरफ हैं? हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सुनते हैं ये प्यारा सा दूसरा गाना।

आपका स्वागत है फिर से दोस्तों। अब अगर आप मुझसे पूछे कि पोर्चुगल के बाद मैं किसे सपोर्ट कर रही हूं, तो दोस्तों मैं पूरी तरह से अर्जेंटीना के साथ हूं। और हो भी क्यों ना हो, कल रात का मैच देखा आपने? वाकई में बहुत ही खूबसूरत गेम था। मुझे तो मेसी पर बेहद गर्व हो रहा है। कल फीफा वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल मैच हुआ इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच, वो सच में रोंगटे खड़े करने वाले थे। 55 मिनट में इंग्लैंड के एंटोनी गॉर्डन ने गोल करके इंग्लैंड को 1-0 की लीड दिला दी थी। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड 60 साल बाद फाइनल में पहुंच गए, लेकिन हमारे 39 ईयर ओल्ड लियोनेल मेसी और उनकी टीम के इरादे कुछ और ही थे। मैच खत्म होते ही ठीक 5 मिनट पहले यानी 85th मिनट में मेसी के एक जबरदस्त असिस्ट पर एंजो फर्नांडेज ने बॉक्स के बाहर से कमाल का शॉट मारा और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती है दोस्तों। जब एक्स्ट्रा टाइम का खतरा मंडरा रहा था, ठीक 92nd मिनट में यानी स्टॉपेज टाइम में फिर से मेसी के एक खूबसूरत क्रॉस पर सब्स्टिट्यूट लोटारो मार्टिनेज ने फ्लाइंग हेडर लगाकर गोल डाल दिया और अर्जेंटीना को 2-1 से जिता दिया। इस ट्रेलिंग कमबैक के साथ अर्जेंटीना अब फाइनल में पहुंच गई है, जहां उनका सामना स्पेन से होगा। खेल का जज्बा इसी को कहते हैं दोस्तों, आखिरी दम तक हार नहीं मानना। तो चलिए इस शानदार गीत और खेल के उत्सव को बनाए रखते हैं और सुनते हैं आज के प्रोग्राम का ये दूसरा गाना।

0: दोस्तों ये तो हेलो ईटानगर, उम्मीद है आपने इस सेगमेंट को एंजॉय किया होगा। यह आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक

0: समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। नए स्वरूप में 4 बड़े सुधार किए गए हैं। इसमें पहला, फालतू कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीज नहीं होंगी। दूसरा, यात्री सभी श्रेणी की सीट उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम की गई है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सुरक्षित हो जाएगी। इससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी नई वेबसाइट का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया है। IRCTC की वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज पूरे देश में शुरू हो रही है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा रथों में बैठकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये भगवान जगन्नाथ की मौसी का निवास माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिन तक गुंडिचा मंदिर में रहते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद उन्हीं रथों पर श्री मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा या वापसी रथ यात्रा कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत और बेल्जियम व्यापार और निवेश, हरित ऊर्जा, परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की ब्रसेल्स में आयोजित पहली बैठक में संरचित और व्यापक साझेदारी के माध्यम से आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे जोरदार धमाके के बाद ईरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गई। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा के कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने अगले 2-3 दिन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज लू चलने का अनुमान है। दिल्ली में दिन के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ गर्म और उमस भरे मौसम रहने का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम के एजिस्टन में पहले 1 दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया था। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप का खिताब जीता था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Union Cabinet has approved two elevated highway projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved these projects to improve road connectivity and reduce congestion

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याचू। अभी अभी दिल्ली से हमारा नेशनल न्यूज बुलेटिन खत्म हुआ है और अब वक्त हो चला है एक ऐसे सेगमेंट का जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हां, शुरू करने जा रहे हैं आपका फेवरेट बॉलीवुड शो फिल्मी गपशप। अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे बी टाउन के बिल्कुल गरम गरम खबरों की, बॉक्स ऑफिस के हंगामा की और ओटीटी पर चल रहे धमाके की। तो चलिए इस फिल्मी सफर को शुरू करते हैं इस पहले सुपरहिट गाने के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। सबसे पहले बात करते हैं थिएटर्स की ताजा हाल की। इस जुलाई 2024 में ना बॉलीवुड ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह आग लगा रखी है। पिछले दिनों दो बहुत बड़ी फिल्में आमने सामने थी। एक तरफ YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड एक्शन थ्रिलर अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट और शार्वरी एजेंट के रूप में तबाही मचा रही है, और दूसरी तरफ है 200 करोड़ की मेगा बजट वाली कॉमेडी मूवी धमाल 4। खबर यह है दोस्तों कि जहां अल्फा ने पिछले दो हफ्तों में लगभग 92 करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन कर लिया है, वहीं अजय देवगन, अर्शद वारसी और रितेश देशमुख के धमाल 4 की स्लैपस्टिक कॉमेडी को देखने के लिए सिंगल स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्सेस दोनों जगह लंबी लाइन्स लगी हुई है। लोग हंस हंस कर पागल हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीकेंड का प्लान जरूर बना लीजिए। चलिए इसी फिल्मी जोश के बीच सुनते हैं हमारा आज का दूसरा गाना, फिर बात करेंगे कुछ और नई अनाउंसमेंट्स की।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

आपका स्वागत है फिर से दोस्तों। सोशल मीडिया पर अभी एक और बड़ी खबर तेजी से वायरल हो रही है। बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर राजेश शर्मा को लेकर एक अपडेट आई है। दरअसल प्रभास की अपकमिंग मूवी फौजी के सेट पर उन्हें एक इंसेक्ट बाइट यानी कीड़े ने काट लिया था, जिसके बाद उन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उनके फैंस लगातार उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि वो अब काफी बेहतर है। इसके साथ ही डायरेक्टर इंद्र कुमार के बेटे अमन इंद्र कुमार अपनी नई कमिंग ऑफ एज मूवी तेरा यार हूं में से इसी महीने 31 जुलाई को अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहा है। पूरी बॉलीवुड सर्कल्स में इस नए स्टार किड के डेब्यू को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है। चलिए इन खबरों के बाद वक्त है एक सुहाने से तीसरे गाने का।

दोस्तों आइए अब बात करते हैं उन फिल्मों की जिनसे अगले कुछ ही दिनों में सिनेमास गूंजने वाले हैं। 24 जुलाई को परेश रावल की एक बहुत ही शानदार ग्रैंड वेडिंग फैमिली ड्रामा मूवी आने वाली है जिसका नाम है दुल्हनें ले आएंगे। कहा जा रहा है कि इसमें फैमिली सीक्रेट्स और क्लैशिंग ईगोज का एक कमाल का मिक्स देखने को मिलेगा जो आपको पुरानी सूरज भारद्वाज फिल्मों की याद दिला देगा। साथ ही अगस्त के महीने के लिए अभी से हाइप बना हुआ है सनी देओल और प्रीति जिंटा की बटवारा 1947 14 अगस्त को रिलीज हो रही है और ठीक उसी दिन इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड रोमांटिक थ्रिलर आवारापन तू भी आ रही है। मतलब सिनेमास में टक्कर बहुत जबरदस्त होने वाली है। पर अभी रुकिए, अगला गाना सुनते हैं और इसके बाद बात करेंगे कि आपके मोबाइल और टीवी स्क्रीन्स पर यानी ओटीटी पर क्या नया धमाका हो रहा है।

चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, क्योंकि अगर आप घर बैठे मूवी देखने का शौकीन रखते हैं तो आपके लिए बहुत सारा नया कंटेंट आ चुका है। जियो हॉटस्टार पर अभी हाल ही में प्रीतम एंड पेड्रो स्ट्रीम हुई है। पता है इसका सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है? इस सीरीज से मास्टर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी अपना स्ट्रीमिंग डेब्यू कर रहे हैं। इसमें वीर हिरानी और अरशद वारसी दो ओल्ड स्कूल मुंबई कॉप्स के रूप में दिख रहे हैं, जो टेक से ज्यादा अपने गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं, और उनका मुकाबला है एक साइबर क्रिमिनल से जिसे विक्रांत मासे ने निभाया है। इस हाई स्टेक्स चेस ड्रामा को काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। चलिए इस कमाल के ओटीटी अपडेट के साथ सुनते हैं हमारा अगला गाना, फिर लौटेंगे कुछ और कोर्टरूम थ्रिलर्स के साथ।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM। OTT पर एक और मूवी जो अभी पूरी तरह से ट्रेंड कर रही है वो है नेटफ्लिक्स पर आई इक्का। वैसे पर्सनली मैंने इस मूवी को देखा है और मुझे काफी बेहद पसंद आया, स्पेशली जब अक्षय खन्ना और बॉबी देओल बहुत ही सालों के बाद एक साथ इस मूवी पे नजर आए हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही ट्विस्टेड और माइंड बेंडिंग कोर्ट रूम ड्रामा है जिसने अक्षय खन्ना, सनी देओल, तिलोत्तमा शोमे और दिया मिर्जा जैसे पावर पैक एक्टर्स हैं। स्टोरी एक सेलिब्रेटेड अटॉर्नी के बारे में है जिसे एक ऐसे मर्डर एक्यूज को डिफेंड करना पड़ता है जिसका करियर उसने खुद बर्बाद किया था। अगर आपको सस्पेंस और दिमाग घुमाने वाली कहानियां पसंद है तो ये आपके लिए परफेक्ट है। चलिए अभी सस्पेंस के बाद थोड़ा चिल करते हैं और सुनते हैं हमारा ये अगला गाना।
3: और मम्मी भी।

दोस्तों वेटरन फिल्म मेकर केसी बोखादिया की एक बहुत ही सेंसिटिव और सोशल अवेयरनेस वाली फिल्म तीसरी बेगम परसों यानी 18 जुलाई को सीधी ओटीटी पर प्रीमियर करने जा रही है। ये फिल्म वुमेन्स एम्पावरमेंट और उनके राइट्स पर बात करती है, जिसमें जरीना वहाब और मुग्धा गोडसे लीड रोल्स में हैं। और हाँ, जो लोग मुझसे बार बार सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे कि आलिया भट्ट की अल्फा थिएटर के बाद किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो आपको बता दूं कि नेटफ्लिक्स ने इसके पोस्ट थियेटिकल स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद लिए हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त के आसपास ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

दोस्तों, ये थी फिल्मी गपशप। उम्मीद है आपको मिला होगा एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज। ये आकाशवाणी टानर कारण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: रथयात्रा अटूट आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाती है। उन्होंने भगवान से सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान हफ्ते में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गई हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बेहद अहम खार्ग द्वीप की ओर जा रहे खाली टैंकर को रोक दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत करने की कोई योजना नहीं है। भारत और बेल्जियम व्यापार और निवेश, हरित ऊर्जा, परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गार्डन ने पहला गोल किया। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप का खिताब जीता था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings, elder brother Lord Balbhadra and younger sister Devi Subhadra, will begin today at Puri in Odisha. Our correspondent has filed this report.
2: Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. With the first rays of dawn illuminating the sacred Badadanda of Puri, an ocean of devotion is enveloping the pilgrim city as Lord Jagannath, Lord Balabhadra, Devi Subhadra and Lord Sudarshan are embarking on their annual sojourn to the Sri Gundicha temple, revered as the maternal aunt abode of the sibling deities. Despite heavy rain lashing Puri since early morning, lakhs of devotees are remaining undeterred, patiently and anxiously waiting ceremonial Pahandi Vijay of the Holy Trinity to the their respective chariots. The ceremonial Chhera Pahara ritual will thereafter be performed by Gajapati Maharaja of Puri Divya Singh Dev atop the three magnificently adorned chariots Nandi Ghosa, Taladhwaja and Devi Dalana before devotees begin pulling

0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट आरजे याचू। आज हमने बहुत सारी बातें की, खबरें सुनी और अलग अलग रंग देखे, पर अब जो वक्त हो चला है ना, वो हमारे दिन का सबसे खास हिस्सा है, क्योंकि अब शुरू हो रहा है आपका अपना बिल्कुल आजाद और आपकी पसंद के प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.5।

101.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके

दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां माइक मेरा होता है पर कंट्रोल पूरी तरह से आपका होता है। आपकी पसंद आपके चाहने वालों के नाम और वही सुहाने गीत जो आपके दिल के बेहद करीब है। तो चलिए बिना किसी देर के आपके मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं और जुड़ते हैं हमारे पहले लिसनर के साथ।

दोस्तों, जो पहली फरमाइश आई है वो हमारे बेहद प्यारी और तेली लिसनर गुमेमई बागरा जी की तरफ से आई है, जो हमें सुन रही है हिकी बागरा से। गुमे जी ने जिस गीत की रिक्वेस्ट की है वो सुनते ही दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। उन्होंने चुना है नाइटिंगल ऑफ इंडिया लेजेंडरी लता मंगेशकर जी की आवाज में गाया हुआ बेहद प्यारा नगमा तेरी मेरी जिंदगी। गुमे जी, आपका चॉइस सच में कमाल का है। लता जी की आवाज में जो तहराव है वो आज की इस बागडोर वाली जिंदगी में एक ठंडी हवा के झोंके जैसा लगता है। चलिए आपकी फरमाइश पर और पूरे ईटानगर के लिए पेश है ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, अब जो अगला मैसेज आया है वो हमारे स्टेट की बाउंड्री को पार करके पड़ोसी राज्य आसाम से आया है। गोखाखात आसाम से हमारे बेहद लॉयल लिसनर हर्षित ने हमें याद किया है। हर्षित ने जो गाना चूज किया है ना, वो आज के यूथ के दिल की आवाज है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इक्लिप्स नोवा के बेहद इंस्पायरिंग ट्रैक मेरा सफर। हर्षित, आपका ये सॉन्ग चॉइस बताता है कि आप जिंदगी के सफर को कितने पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। ये गाना उन सभी के लिए है जो अपने सपनों के पीछे दौड़ रहे हैं। सुनिए ये बेहतरीन गीत।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

आपका स्वागत है फिर से दोस्तों। अगला मैसेज जो आया है वो एक पूरे दोस्तों के ग्रुप का है। लंकंग सम कार्बी आंगलोंग से हमारे प्यारे और लॉयल लिस्नर टेंसन क्रो, अथुर और सरलो ने मिलकर हमें लिखा है। इन तीनों दोस्तों को 90s का वही एनर्जेटिक और रोमांटिक जमाना याद आ रहा है। उन्होंने फरमाइश की है अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर पर पिक्चराइज किया गया वो सुपरहिट गाना दिल दीवाना ढूंढता है एक हसीन लड़की। क्या शानदार दौर था वो जब ऐसे अपबीट रोमांटिक गाने हर शादी और पार्टी की जान हुआ करते थे। अक्षय और करिश्मा की केमिस्ट्री और वो डांस स्टेप आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है। तो टेंशन, अथुर और सरलो, आप तीनों के लिए और आपकी दोस्ती के नाम ये गाना चला रही हूं, सो एंजॉय कीजिएगा।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो आई है सोनितपुर असम से हमारे एक और डेली लिसनर अमल बसमदारी की तरफ से। अमल ने इस गीत को किसी एक के लिए नहीं बल्कि अपने सभी दोस्तों के लिए डेडिकेट किया है। दोस्ती का यही तो मजा है दोस्तों, जो हर अच्छे गीत को और भी यादगार बना देता है। उन्होंने गाना चुना है मूवी आ अब लौट चले से, ये कैसी मुलाकात। और पता है दोस्तों, इस गाने की एक और खास बात है, ये हमारी सबकी फेवरेट और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय जी की दूसरी बॉलीवुड मूवी थी। ऐश्वर्या राय, जब भी हम ये नाम सुनते हैं ना, एक अलग ही प्राइड और इंस्पिरेशन फील होती है। उन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने काम और उनकी ग्रेसफुल पर्सनालिटी से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। वो सही मायनों में एक सच्चे मिस वर्ल्ड है, जो हर लड़की को एम्पावर करती है। तो अमल और उनके सभी दोस्तों के नाम और ऐश्वर्या राय जी की इस बेमिसाल अंदाज को याद करते हुए आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों फरमाइशों का ये कारवा अभी रुका नहीं है, हमारे पास और भी मैसेजेस हैं और आपकी पसंद के बहुत सारे गाने अभी बाकी हैं। आप लोग बस कहीं मत जाएगा, बने रहिए मेरे साथ सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। अगला गाना कौन सा होगा आइए देखते हैं।

दोस्तों अगला रिक्वेस्ट आया है हमारे पड़ोसी राज्य असम से, सोनबिल कुडाली असम से हमारे लिसनर हितेंद्र दास जी ने हमें याद किया है। हितेंद्र जी, आपका ये मैसेज देखकर दिल खुश हो गया और जो गाना आपने चुना है ना, उसने तो स्टूडियो का मौसम ही बिल्कुल बदल दिया। किशोर कुमार जी का गाया हुआ सुनहरी नगमा रात कली एक ख्वाब में। दोस्तों आदि बर्मन दा का म्यूजिक और मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखे ये शब्द, जब भी ये गाना बजता है ऐसा लगता है जैसे वक्त वही थम गया हो। आजकल के फास्ट म्यूजिक के दौर में भी ये गाना हर जनरेशन के दिल को छू लेता है। हितेंद्र जी, आपका ये रोमांटिक और रेट्रो चॉइस सच में बेहद सुहाना है। तो चलिए आपकी इस बेहतरीन फरमाइश पर पेश है ये सुनहरा गीत, सुनिए और खो जाइए यादों में।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
3: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
2: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
3: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
2: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
3: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए।

0: ये और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366931 या 9402877126 पर।
0: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। दोस्तों, विश्वनाथ चौराली असम से हमारे लॉयल लिसनर कुमार ने हमें मैसेज किया है। कुमार जी, आपका नाम जितना प्यारा है, आपका सॉन्ग चॉइस भी उतना ही मिठास से बड़ा है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है 90s का एक बेहद रोमांटिक ट्रैक मेरा एक सपना है, जो संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर की मूवी खूबसूरत से है। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में ये गाना जब भी बजता है, वही पुराना मासूम प्यार दिमाग में तीर की तरह लगता है। कुमार जी, आपके इस सुनहरी फरमाइश को पूरा करते हैं, सुनिए ये प्यारा सा गाना।

दोस्तों, आप जो मैसेज आया है उसने मेरे दिल को एक अजीब सा एहसास और इमोशनल करवट से भर दिया है। ये रिक्वेस्ट आई है हमारे डेली लिसनर आरफ की तरफ से, जो हमें संगी पार्क ईटानगर से रोज सुनते हैं। आरफ जी ने जिस गाने की फरमाइश की है वो है वो हाल ही में आई मूवी बॉर्डर 2 से घर कब आओगे। दोस्तों, जब पिछले साल बॉर्डर 2 का टीजर आया था और जब फिल्म आई, इसने 1997 की उस आइकॉनिक मूवी बॉर्डर की पूरी नॉस्टैल्जिया और यादों को दोबारा ताजा कर दिया। रूप कुमार राठौर और सोनू निगम जी की आवाज में ये नया ट्रैक और उस इंसान की आंख नम कर देता है जो अपने घर से दूर है। मैंने एक चीज नोटिस की है आरफ, जब भी हमें मैसेज करते हैं सिर्फ इसी एक गाने की रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गाना हमें पसंद नहीं, ये सच में बेहद खूबसूरत और सेंटिमेंटल है। पर आपकी ये चाहत देखकर मैं अक्सर सोचती हूँ, क्या आप हमारे देश के एक फौजी हैं? क्या आप एक जवान हैं जो बॉर्डर्स पर खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं? अगर आप सच में एक सोल्जर हैं आरफ, तो आकाशवाणी ईटानगर की पूरी टीम और हमारे सभी लिसनर की तरफ से आपको एक दिल से सल्यूट। एक सोल्जर ही जिंदगी और उनके परिवार को का जो सेक्रीफाइस होता है ना, उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। आरव, आप जहां भी हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये बेहद इमोशनल और देश के वीरों

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक पी तंगजांग और तकनीकी अभियंता बीसी शर्मा। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे दुनिया के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपनी आरजे याजू को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुनते रहिए अरुण एफएम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा के समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने आज आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में देश में विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह

पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा आज से उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देश विदेश के लोगों को बधाई दी है। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। नए स्वरूप में 4 बड़े सुधार किए गए हैं। पहला, इसमें फालतू कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं है। दूसरा, यात्री सभी श्रेणी की सीट उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, टिकट बुक करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी लेगी जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। PV सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, इससे पहले पहले प्रसारण सभा में आप बने हुए थे RJ याजो के साथ। उम्मीद करती हूं RJ याजो के साथ आपका सफर बहुत ही मनोरंजक रहा होगा। अब इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज की दूसरी प्रसारण सभा। और इस सफर में आपके साथ रहूंगी मैं, आपके रेडियो साथी RJ दुनिया। दोस्तों, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा अजपीति में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गैर अतर तथा तकनीकी अभियंता नंद कुमार। रोजाना की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे देहरो ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो दोस्तों, आइए सभा की शुरूआत करते हैं।

दोस्तों आज की दूसरी प्रसारण सभा की शुरुआत करें, आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। अब से लेकर 11:30 तक आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्म लहर। 11:30 पर आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। 12:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 12:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। 12:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीत माला। 1:00 से लेकर 1:10 तक बारी बारी से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 1:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। 2:00 से लेकर 2:30 तक आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। 2:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। मिश्मिकमन श्रोताओं का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 3:00। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताइक हमती श्रोताओं का कार्यक्रम। बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 3:30 पर। 3:40 पर आप सुन पाएंगे वंचो श्रोताओं का समाचार। 3:45 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम। ईदुमिश में श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे 4:00। 4:05 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम और सभा के अंत में 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तो दोस्तों ये थे अब से लेकर शाम के 4:20 तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात।

तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की दूसरी प्रसारण सभा। और इस सभा का पहला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फिल्म लहर, जहां हर गीत एक जज्बा है, हर धुन एक एहसास है और हर बोल किसी कहानी का हिस्सा। तो चलिए ऐसे ही एक खूबसूरत गीत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुनते हैं डुप्लीकेट फिल्म से मेरे महबूब मेरे सनम, अलका याग्निक और उदित नारायण।

दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म लहर। आइए फिल्म लहर कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं कसूर फिल्म का जिंदगी बन गए हो तुम, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में 0.4% की बढ़त आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 77,471 पर और निफ्टी 75 अंक बढ़कर 24,154 पर पहुंच गया। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer cooperation among BIMSTEC member countries to address economic challenges, including disruptions in global supply chains. Speaking at the 5th meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today, Mr. Doval said, disruptions in global supply chains have resulted in economic hardship for all the countries. He said, there is an urgent need for BIMSTEC member countries to collaborate, take decisive actions for the mutual benefit, and find solutions through mutual discussions. Mr. Doval highlighted BIMSTEC brings together the most significant and vibrant regions of the Indian Ocean with a combined GDP of nearly $5 trillion.
2: BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building and economic security should continue to drive our collective efforts. For India, BIMSTEC represents our vision of neighborhood first, our commitment to act East policy and the Mahasagar vision, which stands for mutual and holistic advancement for security and growth across regions.
1: The central government has revised the special additional excise duty on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel ATF as part of its latest fortnightly review of fuel export taxes. Under the revised rates, the export duty on diesel has been increased to 15 rupees 50 paise per litre, while the duty on ATF exports has been raised to 14 rupees 50 paise per litre. Meanwhile, the export duty on petrol has been reduced to 2 rupees 50 paise per litre. The revised rates notified by the Finance Ministry came into effect from today. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab tomorrow. The Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station in Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. Mr. Modi will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind. The Enforcement Directorate today conducted search operations at 13 premises in connection with a case relating to an alleged terror funding and illegal infiltration.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। तब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। ये एक ऐसा सफर है जहां गीत किसी फिल्म की कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी ही एक अलग पहचान रखते हैं। नॉन फिल्म गानों की सबसे खास बात यही है कि इन्हें किसी पर्दे या किरदार की जरूरत नहीं होती, ये अपनी धुन और अपने भावनाओं के दम पर दिलों में जगह बना लेते हैं। तो चलिए इसे खुशनुमा एहसास के साथ आज के सफर की शुरुआत करते हैं। पहला गीत है अभिजीत भट्टाचार्य की सुरीली आवाज में, जो हल्की हल्की हवाओं की तरह दिल को सुकून और ताजगी से भर देता है। सुनते हैं चलने लगी हवाएं, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद
1: दोस्तों। अरुण FM 103.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, जहां हम आपको सुनाते हैं उन सुरों को जो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है फिर भी सीधा दिल तक पहुंच जाते हैं। इंडिपेंडेंट म्यूजिक, एल्बम सॉन्ग्स और उन आवाजों को जो अपनी कहानी खुद लिखती है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं अरमान मलिक की आवाज में, मैं रहूं या ना रहूं।

दस इस खूबसूरत गीत के साथ ही गीत नॉन फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे हमारे फौजी भाई बहनों के लिए सजाया गया खास कार्यक्रम गीत माला।

दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीत माला में। ये खास कार्यक्रम सिर्फ संगीतों का कार्यक्रम नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम के जरिए हम अपना सलाम भेजते हैं उन वीर जवानों को जो देश की सुरक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं, हमारे भारतीय सेना के बहादुर फौजी भाइयों और बहनों को। तो चलिए इस देशभक्ति भावना के साथ शुरू करते हैं कार्यक्रम में। सबसे पहले गीत के साथ सुनते हैं रंग दे बसंती फिल्म का तू बिन बताए। इस गीत को गाया है मधुश्री और नरेश अय्यर ने।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366-6931-70 या 9402-8771-26 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: जहाँ दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला। दोस्तों, माँ सिर्फ वो नहीं जो हमें जन्म देती है, बल्कि वो धरती भी है जो हमें पहचान, संस्कार और जीने का हौसला देती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में अपनी मातृभूमि को लेकर

एक अलग ही सम्मान और प्यार होता है, और इसी भावनाओं को सुरों में पिरोता हुआ एआर रहमान का ये अमर देशभक्ति गीत जो आज भी हर दिल में जोश भर देता है, सुनते हैं माँ तुझे सलाम एआर रहमान की आवाज में।

दोस्तों आप सुन रहे थे हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को।

0: घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर

0: किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Defense Minister Rajnath Singh has said the government is ensuring that development and national security progress on the same path. He emphasized that the government's endeavor is to build an India where borders are secured and connected. Addressing the Border Road Organization Tech Symposium in New Delhi, Mr. Singh highlighted that advanced infrastructure has always been the hallmark of a developed civilization. He said the infrastructure being built today will define the country's civilization in the coming years. He said the government's aim is to ensure that no citizen living in any remote area feels cut off from the mainstream.
2: We understand that the stronger a country's infrastructure, the stronger its future will be. We have ensured that no citizen living in the most remote corner of the country feels disconnected from the mainstream. We have undertaken a mission to connect every village, every city, mountains, rivers, and remote regions across the country. We have pursued this vision because we believe that connectivity is an essential pillar of a nation's development.
1: National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer cooperation among BIMSTEC member countries to address economic challenges, including disruptions in global supply chains. Speaking at the fifth meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today, Mr. Doval said disruptions in global supply chains have resulted in economic hardship for all countries. He said there is an urgent need for BIMSTEC member countries to collaborate, take decisive actions for mutual benefit, and

0: of prisoners who are of advanced age or are terminally ill. The court ordered that the policy be framed and notified within 3 months to ensure a uniform mechanism for considering such cases across the country. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta issued the directions by invoking its extraordinary powers under Article 142 of the Constitution while deciding a public interest litigation plea seeking a humane and uniform framework for the release of elderly and seriously ill prisoners. The Delhi High Court today directed authorities to monitor the health of activist Sonam Wangchuk on a daily basis, stressing that life is precious. Mr. Wangchuk is on an indefinite fast at Jantar Mantar in New Delhi. A bench of Chief Justice D.K. Upadhyay and Justice Tejas Karia asserted that Mr. Wangchuk's condition should be checked regularly by government doctors. Solicitor General Tushar Mehta, who appeared for the centre as well as the Delhi government, submitted that life of every individual is precious and there was no objection to undertaking Wangchuk's regular medical checkup. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the India-European Union Free Trade Agreement can open real doors for Indian industry and deliver tangible outcomes for Indian businesses, MSMEs and people. In a social media post, Mr. Goyal informed that he interacted with the Indian business delegation comprising members of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Confederation of Indian Industry, ASSOCHAM and other regional associations in Brussels, Belgium. The Indian Meteorological Department has issued orange alert for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal and Odisha today. The IMD forecast heavy rainfall conditions over Assam, Meghalaya, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and Uttarakhand for the day. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain on Sunday night. And with that, we end this news bulletin.
1: तो दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी तनागर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात. दोस्तों अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश.
2: हेलो फरमाइश. हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 11 बजे होती है. फोन नंबर है 03602292239 यानी 03602292239.
3: हेलो फरमाइश.
2: हेलो फरमाइश.
4: हेलो फरमाइश
2: जी. नमस्कार. हेलो फरमाइश ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
4: नमस्कार सर, मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ, सोनितपुर असम से, रंगापरा.
2: जी अमल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और सुनाइए.
4: कल रात से बहुत बारिश हुई थी और अभी बारिश थोड़ी सी खुली हुई है.
2: अच्छा जी जी.
4: और अभी गर्मी होने के लिए शुरू हो गया है, लेकिन रात में थोड़ा सा ठंडा हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन आज फिर से धूप देने लगी है.
2: ओके, रात को ठंडी थी, अभी फिर धूप निकल रहा है.
4: जी
2: ओके ओके जी जी. ये धूप छाव का खेल तो चलता रहेगा.
4: यहाँ पर भी तो अरुणाचल में भी तो बारिश होते रहे.
2: हाँ जी हाँ जी, अरुणाचल में पूरा बारिश है बारिश है.
4: जी जी जी. हम अभी खेत में है, चाय के बागान में हूँ.
2: अच्छा जी जी जी. और कौन कौन है साथ में?
4: साथ में मेरे भाभी है और सासू माँ है और हमारे बेटिया है दो.
2: ओके ओके. तो सभी काम खेत में काम कर रहे हैं अभी.
4: जी जी. तोड़ रहे हैं.
2: अच्छा, चाय पत्ती ना. ओके ओके, बढ़िया बढ़िया. और आपके वहाँ का चाय
4: के लिए फरमाइश था.
2: हाँ जी जरूर जरूर.
4: कॉल करते करते फिल्म का नाम बोल गया, लेकिन गाना थोड़ा सा गुनगुनाते थे.
2: जी बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी.
4: मेरे साथ साथ है मेरे यार के, इसी गाना था. और इस गाने को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा सबसे पहले भाई कौन मंडा को और बिमल बसुमतारी को, रमेश पात्रो, जोगेंद्र रोंगपी, देवाशीष हजरिका और प्रेमजीत चक्रवर्ती, अनुप कुमार भट्टाचार्य जी और आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ, अविनाश टैली एंड हमारे हेलो फार्मासिस्टा ग्रुप की भगवान सिंह परमार और रमेश प्रजापति, शिवा लोहार और प्रेम सिंह सोसोदिया, केसरी सिंह राजपूत और गौतम राय बोले और राकेश जी है और बहुत सारे सुनने वाले दोस्तों को और आपको
2: जी
4: और नूरी मैम को.
2: ओके, मुझे और नूरी मैम को भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो अमल जी, सुनते हैं आपके पसंद का गाना.
4: जी जी.
2: ओके नमस्कार.

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी छत्तीसगढ़ से हमारे दोस्त इंद्रभान जी कैसे हैं बताइए।
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी परेड में हूँ सर, ड्यूटी में हूँ और आपका कार्यक्रम में फोन कर रहा हूँ सर, और बातचीत बढ़िया हो रहा है।
0: जी बिल्कुल जी। ओके, ड्यूटी से आपने हमें कॉल मिलाया
1: जी।
0: जी, और वहाँ का मौसम कैसा है अभी इंद्रभान जी?
1: सर यहाँ का मौसम सर देखिए बादल किया है और उमस टाइप को लग रहा है सर, लेकिन ये हवा चलता है तो ठंडा ठंडा हवा चल लगता है सर।
0: अच्छा जी।
1: जहाँ हवा बंद होता है और हल्का हल्का धूप भी है।
0: ओके, बारिश हुई नहीं अभी?
1: अभी नहीं हुई सर, ये बड़ा डिफिकल्ट है। पानी कब गिरेगा ये कोई कहा नहीं जा सकता। मौसम बनता है
0: अच्छा,
1: लेकिन अचानक पानी अभी गिरना चाहिए था लेकिन गिर नहीं पा रहा है सर। पता नहीं क्या हो रहा है, उलट उलट मौसम।
0: ओके, उलट पुलट मौसम। जी। तो आशा करता हूँ जल्दी बारिश हो ताकि आप सभी को आराम मिले गर्मी से। जी तो इंद्रभान जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: आज सुनो सर, फिल्म का नाम है नास्तिक, अमिताभ बच्चन जी का वो गाना ना है। आज के दिन बन जाएगा कल, पीछे न मुड़ के भी प्यारे आगे चल, गायक किशोर कुमार। और सबसे पहले गीत आपको केने निर्देश साहब को, पूरे भारत श्रोता को, श्रोताओं को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके सैनिक को, ईटानगर में जुड़े सभी दोस्तों भाई बहनों को और ईटानगर में सभी स्टाफ कर्मचारियों को, खासकर आपको गीत कर रहा हूँ सर। इसका प्रसारण
0: मंगलवार को,
1: मंगलवार को शाम को 7:30 बजे ना?
0: जी। हाँ जी,
1: रात को 8 बजे और शनिवार को
0: 1:10 को।
1: अच्छा 1:10
0: जी
1: ठीक है सर, सुना दीजिए।
0: ओके, जरूर सुनाएंगे आपको आपको पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

ए बाबू आगे चल, आज का ये दिन कल बन जाएगा कल।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया नमस्कार।
0: नमस्कार योगेश जांगड़े जी।
1: जी योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए कैसे हो आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: परिवार में सभी कुशल मंगल?
1: बिल्कुल कुशल मंगल।
0: ओके। और मौसम कैसा है?
1: मौसम तो धूप छांव हो रहा है भैया।
0: अच्छा बारिश हुई नहीं अभी तक?
1: बारिश अभी मतलब चार पांच दिन लगातार हुआ है भैया, मतलब चार पांच दिन पहले।
0: अच्छा जी जी जी
1: जी
0: ओके। और बारिश कब तक होती है आपके वहाँ पे?
1: ये तो
0: सितंबर
1: सितंबर के आसपास तक होता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी
0: जी जी तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे योगेश जी?
1: फिल्म है धर्मात्मा और गीत के बोल है, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर
0: बड़ी
1: दिखती
0: सुंदर
1: हो।
0: दिखती हो। वाह वाह वाह जी जी बहुत दिनों के बाद मैं भी सुनूंगा इस गीत को आपके साथ। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
1: हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के तमाम साथियों को डेडिकेटेड।
0: ओके तो योगेश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर,
0: जी
1: आपने आपके आकाशवाणी ईटानगर में हमारा स्वागत किया सर। और हम इतने मेहनत से, इतने दिल से फोन लगाते हैं सर, और आपको याद करते रहते हैं सर।
0: क्या बात है, क्या बात
1: तो
0: है।
1: मैं नाम बताना चाहता हूँ सर,
0: जी
1: मेरा नाम है राम बाबू मालवी, बोल रहा हूँ कोला रोड भोपाल।
0: जी राम बाबू जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी
0: और
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: जी
1: सर आप कैसे हो सर?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप भी
1: जी
0: बहुत ही बढ़िया होंगे।
1: बहुत बहुत बढ़िया है सर।
0: जी
1: सब परिवार, मतलब हमारा संपूर्ण परिवार सब आनंद मंगल में है।
0: जी
1: और जितने भी आकाशवाणी सुनने वाले हमारे मित्र है, जैसे लोकेंद्र वर्मा जी है और बहुत सारे दोस्त, सब आनंद मंगल में होंगे सर। यही कामना करते हैं
0: जी
1: भगवान
0: जी
1: से।
0: जी जी जी जी हम भी यही कामना करते हैं, हम सभी कुशल मंगल रहें।
1: जी
0: जी तो कहिए राम बाबू जी, आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, एक गाना है सर, गाने के बोल इस प्रकार है। दिल ही दिल में ले लिया, दिल मेहरबानी।
0: बहुत ही प्यारा गीत है।
1: हाँ जी
0: जी
1: सर। और फिल्म, लगभग फिल्म का नाम बताना चाहता हूँ सर, आज की आवाज।
0: आज की आवाज।
1: जी,
0: जी
1: राज
0: जी जी
1: गब्बर साहब की फिल्म थी, है राज गब्बर साहब ही थी ये फिल्म, और बहुत अच्छी फिल्म है सर, मैंने देख ली।
0: अच्छा, जी जी जी
1: जी
0: मैंने तो देखा नहीं लेकिन गाना तो सुना है, बहुत ही बढ़िया गाना है।
1: हाँ, बहुत
0: जी
1: प्यारा संगीत है सर, और
0: जी
1: इसकी
0: जी
1: आवाज बहुत प्यारी है। जो भी सिंगर है उसकी आवाज भी बहुत प्यारी है। और
0: ये
1: अपने इंडिया में जितने भी गाने हैं सभी सुपरहिट है, सभी सिंगर अच्छे हैं।
0: जी वो
1: एक
0: तो
1: का
0: सही
1: नाम
0: बात है।
1: लेंगे तो दूसरे को बुरा लगेगा इसलिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और
1: जी।
0: किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे राम बाबू जी इस गीत को?
1: जी सबसे पहले तो सर आपको, आपके साथ सुनना चाहेंगे हम सर,
0: जी बहुत बहुत
1: और
0: धन्यवाद।
1: लोकेंद्र वर्मा जी, और जितने भी सुनने वाले सभी दोस्तों मित्रों के लिए।
0: ओके, तो राम बाबू जी कॉल
1: जी
0: करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी
1: जी सर,
0: मिलकर सुनते
1: बहुत
0: हैं
1: बहुत
0: आपके पसंद का
1: धन्यवाद।
0: गाना। नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्कार।
0: सुतापा जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप जी? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? ओके, हमेशा बढ़िया रहिए, अच्छा रहिए जी। आज के कौन फिल्म गाना सुन बेन सुतापा जी?
1: फिल्म का नाम है अभिमान।
0: अभिमान? ओके।
1: तेरे मेरे निगम किए रहना।
0: ओहो वाह वाह, बहुत ही बढ़िया गाना आपने चुना है। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: पहले तो आपके लिए
0: थैंक यू।
1: मैं बोलते चलिए विपिंदर वर्मा तो माता मोदी
0: ओके। आवाज क्लियर नहीं, फिर भी मैंने सुन लिया है, आपने अपने जो दोस्तों को डेडिकेट किया है। तो सुतापा जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर जी, मैं रमेश प्रजापति, ग्राम बाया, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ सर जी।
0: जी रमेश प्रजापति जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: बस स्वस्थ है, मस्त है। पानी ज्यादा गिरा नहीं, थोड़ा सा गिरा तो गर्मी और सर्दी दोनों के आनंद ले रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं।
0: अच्छा,
1: हमारे लोकेंद्र वर्मा जी का फोन आया, भाई किल्ला ईटानगर की रिकॉर्डिंग हो रही है, करवा लो। तो हमने फोन लगाया और हो भी गई। धन्यवाद लोकेंद्र वर्मा जी को, वो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं।
0: ओके जी, लोकेंद्र वर्मा जी को हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी नए श्रोताओं को वो जोड़ते रहते हैं हमारे साथ।
1: जी।
0: तो रमेश जी, आप दुकान पे बैठे हुए अभी?
1: जी।
0: ओके, तो दुकान पे बैठे बैठे कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है साहेब जादे। किस घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कोई दिल ये ढूंढ के लाए रे, मेरा लौंग खो गया।
0: लौंग खो गया, क्या बात है।
1: जी
0: बहुत ही प्यारा गाना है। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: हमारे मित्र है, पहले तो लोकेंद्र वर्मा जी है।
0: जी।
1: भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोजी जी, केसरी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, और आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूनम जी है कानपुर से, अविनाश जी है राकेश है शिमला से, और विमल है, अमल है, गोल्डी है, रमेश पात्रे है, और तनुश्री बिटिया है महाराष्ट्र से।
0: तो इन सभी के साथ सुनना चाहते हैं आप इस गीत को?
1: जी।
0: तो रमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: हाँ, जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड वंडा विलेज से आपके लिए मैं श्रोता लक्ष्मण को चाय वाले बोल रहे। सर कैसे हो आप?
0: जी, चाय वाले लक्ष्मण जी, बहुत दिनों के बाद आपने कॉल किया। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ
1: हाँ सर,
0: जी।
1: आप चाय पी लो।
0: जी जरूर चाय पियेंगे।
1: हाँ
0: और कहिए कैसे हो आप?
1: बस पवन कृपा, आप लोग कृपा है। पानी नहीं गिर रहा है तो गर्मी है बहुत।
0: अच्छा, अभी तक पानी गिरी नहीं?
1: गिरा तो है, दो तीन बार गिरा।
0: अच्छा, जी, फिर भी गर्मी तो है ही।
1: हाँ
0: जी, तो चलिए गर्मी में चाय पीते हैं। और कहिए, चाय पीते पीते कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: आज जैसे मौसम चल रहा है पानी का, तो एक है मोहरा पिक्चर, टिप टिप बरसा पानी।
0: मोहरा पिक्चर से टिप टिप। जी,
1: हाँ ये सुनवा देना सर।
0: जी जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: आज हमारे रहेंगे गजराज लोधी है, मांगी लाल चंदेल है, बसंती लाल सुरल, विपिन कटारी, ऋषि के तिवारी, अमित तिवारी है, एक वर्मा है, ये सब दोस्त हैं जो सुनना चाहेंगे।
0: ओके, तो लक्ष्मण जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: ठीक है।

0: हेलो
1: हेलो,
0: फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी। हाँ
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर, मेरा नाम है सिद्धार्थ गुंडाने और
0: ओके ओके
1: मैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर।
0: सिद्धार्थ जी, आप पहली बार हमें कॉल कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सर जी, पहली बार इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं
0: अच्छा
1: और आज मेरा पहली बार कॉल लगा सर।
0: जी, तो सबसे पहले हम आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: और बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपसे बात भी बहुत अच्छी से हो रही है, बहुत अच्छी मिठास में आप
0: बहुत बहुत
1: प्रेजेंटेशन करते हो कार्यक्रम का, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है सर आपसे बात करते हुए।
0: जी, हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सुनते हैं हमारे इस कार्यक्रम को?
1: बिल्कुल, अभी इससे जुड़ा हूँ सर,
0: अच्छा
1: लगभग देश भर के सभी कार्यक्रम सुनते हैं
0: अच्छा
1: लेकिन
0: अच्छा
1: इस ईटानगर से पहली बार जुड़ चुका हूँ सर।
0: ओके, तो आशा
1: अभी
0: करता
1: शुरुआत की है सर और आगे चलते रहेंगे ये सिलसिला, और हम आपसे
0: जी
1: और सभी से जुड़ते रहेंगे, सभी श्रोताओं की फरमाइश भी साथ साथ में चलते रहेंगे।
0: जी जी जी वो
1: और है सर, वैसे मैं बहुत सालों से रेडियो सुनता हूँ,
0: अच्छा जी
1: 2001 से जुड़ा हूँ, अभी
0: अच्छा
1: 25 से 26 वर्ष हो चुके हैं
0: अच्छा अच्छा
1: और देश भर के विभिन्न केंद्रों पर ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पत्रों के माध्यम से मेरी फरमाइश रहती है सर।
0: अच्छा
1: और जितने भी अभी तक सम्मेलन हो चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पे श्रोता हो के श्रोता सम्मेलन,
0: जी जी
1: इस सभी सम्मेलन में मैं देश के हर अलग अलग जिले राज्य में पहुंचा हूँ सर, उसमें सम्मिलित हो चुका हूँ मैं अभी तक।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी सिद्धार्थ जी आपने अपने बारे में। तो आशा करते हैं आगे से आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे।
1: बिल्कुल सर, जुड़ूंगा सर
0: जी
1: और कार्यक्रम का नियमित रूप से

0: होता भी बनूंगा सर ईटानगर का।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिद्धार्थ जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
0: आज मुझे सर गोपी किशन फिल्म का गीत है, छतरी ना खोल बरसात में।
1: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: ये सर सुनूंगा मेरी मिसेस से अर्चना गोंडा ने, मेरी लड़की है प्रसिद्ध जी, लड़का प्रणय
1: जी,
0: साथ में हमारे दो तीन दोस्त है, एक हीरामन शिंदे है, संजय कुमार गेडाम है और हिम्मत राव शुंगारे के साथ। सभी श्रोताओं को एक गीत सुना दीजिए।
1: ओके, तो सिद्धार्थ जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: ओके, थैंक यू।

0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: अभी सुबह धूप निकल रहा है, किसान
0: ओके, धूप है तो
1: बहुत परेशान है क्योंकि सर उन जो जमीन में जो बीज डाले उसके पौधे बरबर निकले नहीं।
0: ओके, तो उसके लिए तो बारिश जरूरी है।
1: हाँ जरूर
0: ओके, तो आशा करते हैं
1: और
0: जल्दी बारिश हो।
1: जी, और सरकार से मांग रहे कि बीज हमको फ्री दो और दूसरा
0: अच्छा।
1: बोने को।
0: जी, हाँ जी, फसल बर्बाद होंगे तो सरकार को तो ये मदद करनी चाहिए। जी जी
1: हाँ,
0: जी
1: फिर भी सरकार मदद कर रही है सर, फिर भी।
0: ओके।
1: और सर आपके पास बारिश है क्या सर ईटानगर में?
0: हाँ, ईटानगर अरुणाचल में तो बारिश ही हो रही है लगातार।
1: ऐसा क्या सर? चलो
0: जी हाँ जी, यहाँ मौसम
1: आपको बहुत खुशकिस्मत ही है सर।
0: जी, पहाड़ी इलाका है, ज्यादा बारिश होती है, अच्छा है।
1: हाँ
0: जी
1: सर,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: ये बारिश के मौसम, हर मौसम अच्छा रहने के वास्ते एक पौधे लगाना जरूरी है सर।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: हाँ, हर इंसान एक दो तो पौधे लगाना तो आगे चल के अपने को हर मौसम अच्छा मिलेगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने
1: हाँ सर,
0: जी। तो गंगाधर जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और अब कहिए, कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: सोनी महिवाल फिल्म का बोल दे मीठे बोल सोनी है, ये गाना सुनना है सर।
0: जी जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के
1: और
0: साथ सुनना चाहेंगे?
1: साथ में मेरे मित्र है
0: जी
1: हमारे तुकाराम जादव, हमारे गौतम जी राय बोले, भगवान सिंह जी, राजेंद्र गंगवार, सुरेश जादव पैठन के, धीरज रबारी, सुनील झा, दिलीप पाहुजा, ये सभी दोस्त है सर, आपको भी सुनना है, इनको भी सुनना है। तनुश्री
0: ओके, तो मुझे भी सुनाने के
1: है
0: लिए।
1: सर, सातारे के तनुश्री।
0: ओके जी जी जी हाँ जी
1: हाँ
0: ओके, तो गंगाधर जी, मुझे भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: धन्यवाद सर।
0: ओके धन्यवाद।

0: हेलो, फरमाइश
1: जी। प्यार भरा नमस्कार सर जी।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से।
1: जी सर जी, धन्यवाद
0: जी।
1: मैं जवरडी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम राय बोली बात करूं सर जी, बहुत 4 महीने बाद।
0: क्या बात है गौतम जी, आपने 4 महीने बाद भी हमें याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 4 महीने बाद याद इसलिए किया सर जी कि ताकि हमारे जो नए साथी है, जो बहुत सारे श्रोता साथी है, वो ईटानगर पर फोन लगाना चाहते है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तो उसका फोन लगना चाहिए, इसलिए हम आराम करते हैं सर जी।
0: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने गौतम जी। आपने कॉल नहीं किया तो हमारे साथ बहुत सारे नए श्रोता भी जुड़े हैं।
1: जी जी जी, हम चाहते सर।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और ईटानगर के सभी कार्यक्रम हमारे महाराष्ट्र अमरावती जिले में सुस्पष्ट आवाज में सुनाई देते सर जी।
0: अच्छा, क्या बात है। जी जी जी,
1: साथ में अभी तक खेती किसानी करते हम, तो खेती किसानी पर आधारित बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं सर जी।
0: ओके जी जी जी,
1: जानकारी बहुत अच्छी जानकारी आती है, कीटकनाशक की हो या दवाई की हो या कौन से खाद की हो या बीज वाई की हो।

0: जानकारी मिलती है सर, ये प्रोग्राम बहुत अच्छे चलते हैं।
1: जी जी जी जी, तो आप हमारे यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
0: जी जी सर, जी जी, बिल्कुल।
1: तो गौतम जी, कहिए आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
0: अब तो सर जी हमारे यहाँ तो अभी कपास की फसल की बुआई हो गई सर जी।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी, हमारे यहाँ अभी बरसात में बुआई चलती है कपास की, बोलो तो सोयाबीन, तुअर, अरहर, सब तरीके बुआई चलती था। अभी जरा मौसम बेमान हो गया हमारे यहाँ, पानी
1: अच्छा,
0: नहीं है सर जी।
1: ओके, मौसम बेमान है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर हम ये फिल्म लोफर का गाना सुनना चाहते हैं, आज मौसम बड़ा बेमान है।
1: ओके
0: और खास और
1: जी जी जी
0: अभी अभी अभी हमारे फसल को बहुत जरूरी है सर जी बारिश की।
1: बारिश जरूरी है। जी जी जी हाँ जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, हम किसान है, किसान खेती करते करते भी आकर अभी मोबाइल ऐप हुआ तो मोबाइल ऐप पर हम यूट्यूब में, ब्लूटूथ में, जबकि ब्लूटूथ में एक जगह पर रख के बहुत बड़े आवाज में कार्यक्रम सुनते हैं, मजदूर को भी सुनाते सर जी।
1: अच्छा, क्या बात है। जी जी जी
0: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बहुत अच्छी तरह से मजदूर भी हंसते गाते मुस्कुराते प्रोग्राम सुनते हैं।
1: अच्छा
0: हेलो फरमाइश, जो
1: जी
0: हमारा
1: जी
0: हेलो फरमाइश एकता ग्रुप है, तो उनके दो चार साथियों के नाम, ये सबसे पहले तो हमारे मित्र लोकेंद्र वर्मा जी है, और खास करके हमारे जो तुकाराम यादव जी है, योगेश जांगड़े जी है, भगवान सिंह परमार जी है, ये राजू यादव जी है, ये सभी साथियों के लिए मेरा गाना डायरेक्ट सर जी। और आशा करता हूँ आपकी इत्यानगर के दुआ से हमारे यहाँ बारिश हो जाए सर
1: जी, यही दुआ करते हैं, जल्दी बारिश हो। तो गौतम जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हल्लो फरमाइश।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 2 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
0: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

अरुण FM 103.1 MHz तेरे दिल का मेरे दिल से। दोस्तों हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बारी बारी से मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। हम लौटेंगे 2:30 पर कार्यक्रम हिट ऑफ 90s के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का।

0: Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. PV Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open Badminton Tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यो को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
2: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
3: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
2: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
1: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनके संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
3: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
4: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
4: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने

0: के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही, और वीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है। यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि वीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
2: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन HF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रूपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रूपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रूपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति

दिशा में आगे बढ़ें। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हानियों को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित बारी बारी से मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब वक्त है कार्यक्रम हिट ऑफ 90s का। जी हाँ दोस्तों, 90s का दौर सिर्फ एक डेकेड नहीं, एक इमोशन था, एक ऐसी वाइब जो हर मेमोरी के साथ जुड़ी हुई है। पहला प्यार हो, दिल टूटने का दर्द हो, या शादी में कजिन्स के साथ डांस, हर मोमेंट का एक स्पेशल 90s सॉन्ग जरूर हुआ करता था। और शायद इसीलिए 90s के गाने आज भी दिल के इतने ही करीब है। सिंपल मेलोडीज, हार्ट फेल्ट लिरिक्स और वो इमोशंस जो सीधा दिल को छू जाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं नॉस्टैल्जिया की उस म्यूजिकल जर्नी पर और एंजॉय करते हैं कुछ एवरग्रीन 90s हिट्स। और शुरू करते हैं हिट ऑफ 90s कार्यक्रम ऐसे ही एक टाइमलेस सॉन्ग के साथ। सुनते हैं हीना फिल्म का अनारदाना लता मंगेशकर की आवाज में।

0: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम हिट ऑफ 90s में, जहां दोस्तों 90s का दौर बॉलीवुड का एक ऐसा दौर था जहां हर हीरो की एक अपनी अलग पहचान हुआ करता था। कोई रोमांस का बादशाह था, कोई एक्शन का किंग, तो कोई अपनी इंटेंस एक्टिंग के लिए जाना जाता था। लेकिन एक ऐसा एक्टर भी था जो जब स्क्रीन पर आते थे तो बस एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट होता था। जहां दोस्तों मैं बात कर रही हूँ गोविंदा की, तो चलिए उन्हीं के आइकॉनिक फिल्म कुली नंबर 1 से सुनते हैं मैं तो रस्ते से जा रहा था, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

इसी के साथ ही दोस्तों आज का हिट अब 90s कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। कल हम फिर लौटेंगे ऐसे ही कुछ सदाबहार नगमों के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। 3 बजे आप सुन पाएंगे मिश्री का मन श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। हम लौटेंगे 3:30 पर कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

सर डिब्रुगर मीडियम वेव्स सी पाक से सिप सी चमसी मीटर्स हो पाक चे सिप हा किलो हर्ट्स में नए चलांग खाम ते खाम ती हाउ ने को मायो मने वन क्या सिप दे लंगनी पी ते सोंग हिंग पाक साउ तु ने इंग्नाजी पी मई सोंग हिंग साउ हो नुन जुलाई ने साउ हो वन कौ खाम लुक नांग प्रिया लोंग फॉय मई हने थोम तिखा औ कुम गंसी पाक 18 an successful candidates and post graduate teachers examination songhing sau ha nai kacham neya wang arunachal pradesh state legislative assembly niyati itanagar wan manai mai appointment orders nai kacham present kan ma kayo mu occasion nai mai cm how hichi pema khandu khaima nai mu Open States Recruiting Agency mai top preference na reforms tang lai mai hagan ma kayo Delhi's an iconic red fort complex nai kacham hangcha thonma Patsip P Independence Day celebration 10 noon August mai ti hap kan sunam nisi lokhai ma kanam ho Archaeological Survey of India nai hangcha Nulem an pingansu amu atang an national celebration mai order issue hama ka nam ho an india myanmar border trade nai kacham nia pangsau pass lukwan south tarik nen july mai angkau tiput kan ma ka yau social media post mai dcm hichi chauna mi in wa ma nai an opening pangsau pass nai an akhe Avenue Hangcha Trade Livelihood Khansam People to People Nal Nong Pinong Mai Connection Nai Kacham Wongkang Border Communities Kalang Hok Pi Mai Restore Tigan Ma Nam Hong Urban Affairs Minister Hikchi Balo Raja Wan Manga Mai Status and Proposed Creation C and Municipalities Neyati Zero Namsai आलो खनसम तवांग मई निया इटानगर मई रिव्यू हिटकन मागा हो मिनिस्ट्री अन रेलवेज नई कचम बीटा वर्जन अन म चांगचांग इंडियन रेलवे केटरिंग खनसम टूरिज्म कॉर्पोरेशन वेबसाइट हंगचा औसु औंगाई ट्रेन टिकट बुकिंग नई लॉन्च हगन मागायो मेट्रोलॉजिकल सेंटर इटानगर नई येलो अलर्ट हमा का नम हो अनफुंग माओ मेन्स क्रिकेट वन सोंगहा वन डे इंटरनेशनल मैच सीरीज साम अन वोंकांग मुंग इंडिया खनसम मुंग इंग्लैंड नई वांग सोफिया गार्डन्स नेयाती कार्ड्रिफ वन मने यान नली अखिंग फाइखम हा नरी पाय 30 मिनट मई तिको लेनकन माकायो मंग अर्जेंटीना नै कचम मंग स्पेन नै खा सोंगहिंग साउ हो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मै तिलु तितो लेनकन माकायो मंग अर्जेंटीना नै मंग इंग्लैंड मै सोंग गोल हसी पे ओंगकन माकायो अंकौ मंग स्पेन नै को मंग फ्रांस मै सोंग गोल हतंग का वालोम सी Finals, semi-finals mai dipachau nai au pong kan ma kayo. Final nai 1 July, Indian Standard Time mai titu lin kan ma nam ho. Khansam cha hang manai kau kham tik khai nai nam ho. Manai oi kham mai nang chau mung khum mai hanai thom tikha.

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों सभा के इस भाग में अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की बॉलीवुड अपडेट, जहां होती है बॉलीवुड के सबसे गर्मा गर्म खबरों के। और पिछले हफ्ते थिएटर्स में हंसी का फुल ऑन डोज लेकर आई है धमाल 4, जो 10 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने और इस बार भी धमाकेदार स्टार कास्ट नजर आ रहे हैं। फिल्म में लीड रोल्स में है अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वर्सी, जावेद जेफरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, ऐशा गुप्ता और भी कई जबरदस्त कलाकार हैं। कहानी एक और क्रेजी ट्रेजर हंट के अराउंड घूमती है, जहां कंफ्यूजन, कॉमेडी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के भरमार है। अगर आप बिना किसी लॉजिक के सिर्फ एंटरटेनमेंट और लाफ्टर एंजॉय करना चाहते हैं तो धमाल 4 आप जरूर देख सकते हैं। और अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। फिल्म ने रिलीज के बाद इंडिया में लगभग 68 करोड़ नेट और वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। ये दिखाता है कि ऑडियंस को धमाल गैंग की मस्ती काफी पसंद आ रही है। रिव्यूज की बात करें तो ऑडियंस ने फिल्म को फैमिली एंटरटेनर बताया है। क्रिटिक्स के मिक्स्ड रिव्यूज आए हैं, किसी ने क्लीन कॉमेडी और नॉस्टैल्जिक फील की तारीफ दी है तो किसी ने स्टोरी को थोड़ा वीक बताया। लेकिन अगर आप सिर्फ हंसना चाहते हैं तो धमाल 4 आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे।

और अब जरा आने वाले दिनों में रिलीज होने वाले फिल्मों पर नजर डालते हैं। 24 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर दो बिल्कुल अलग जॉनर की फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा जाल की। अगर आपको मिस्ट्री, एडवेंचर और सुपरनेचुरल कहानियां पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए हो सकती है। कहानी एक लेजेंडरी खजाने की तलाश के से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये सफर एक ऐसा रहस्यमय जंगल तक पहुंच जाता है जहां हर मोड़ पर नए राज और खतरे छुपे होते हैं। और अब बात करते हैं द इंडिया स्टोरी की। ये फिल्म एक पावरफुल सोशल ड्रामा है जो फूड अल्टरेशन यानी खाने में मिलावट जैसे गंभीर मुद्दे को उठाती है। श्रेयस तलपदे और काजल अग्रवाल स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर काफी चर्चा में है, क्योंकि ये एक ऐसे मुद्दे को सामने लाता है जो हम सब की सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है।

और साथ ही दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड के फैन हैं तो इस वक्त हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रही है, वो है क्रिस्टोफर नोलान की द ओडिसे फिल्म। फिल्म ने अपने इंटरनेशनल रिलीज से पहले ही जबरदस्त बज क्रिएट कर दिया है और अब क्रिटिक्स से भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रही है। मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे और जिंदया जैसे बड़े स्टार्स से सजा ये माइथोलॉजिकल एपिक होमर्स लेजेंडरी कहानी को बड़े पर्दे पर एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के रूप में लेकर आई है। खास बात यह है कि ये दुनिया की पहली फीचर फिल्म है जो पूरी तरह IMAX कैमरास पर शूट की गई है और विजुअल्स की हर तरफ तारीफ हो रही है। क्रिटिक्स इसे क्रिस्टोफर नोलान की एक और ब्लॉकबस्टर मास्टरपीस बता रहे हैं।

0: हेलो सब, जरा नजर डालते हैं इस वक्त के सबसे ट्रेंडिंग न्यूज पर, बॉलीवुड न्यूज पर। तो सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर के। इन दिनों उनकी फिल्म रामायण को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। फैंस का मानना है कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट्स में से एक होने वाली है। रणबीर इस फिल्म में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले हैं और उनके लुक और डेडिकेशन की काफी तारीफ हो रही है। फिल्म को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रमोट किया जा रहा है, जिसके वजह से इस प्रोजेक्ट का क्रेज दिन ब दिन और बढ़ते जा रहा है। और अब बात करते हैं सनी देओल की। गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद सनी देओल एक और हिस्टोरिकल ड्रामा बटवारा 1947 के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली है। फिल्म भारत के विभाजन के दौरान घटी घटनाओं और उस समय के जज्बात को दिखाएगी। सनी देओल के पावरफुल डायलॉग और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस को देखते हुए फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। यह फिल्म इंडिपेंडेंस डे के आसपास रिलीज होगी, इसीलिए देशभक्ति का माहौल और भी खास होने वाली है। और अब सलमान खान के फैंस के लिए एक अपडेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मच अवेटेड फिल्म मातृभूमि की रिलीज डेट थोड़ी आगे बढ़ सकती है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सलमान खान के फैंस को उनकी अगली बड़ी रिलीज के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट में आज बस इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं संजू फिल्म का मैं बढ़िया तू बढ़िया सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में।
1: प्राणु प्रिय

दोस्तों, इसी के साथ ही बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे वांछो श्रोताओं का समाचार।

अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार। दोस्तों, अगर आप वांचो श्रोताओं का आगे के कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के द्वारा भी कार्यक्रमों को आनंद ले सकते हैं। इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, और इस कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं ताल फिल्म से रमता जोगी, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक ने।

अटेंशन, आर्य हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी।

0: ये क्या है?
1: हमारे प्यार की निशानी।
0: तुम इस रिश्ते को गलत समझ रही हो।
1: हमारा रिश्ता कुछ और ही बन चुका है अमर। वी बोथ लव ईच अदर।
0: देखो दिशा, दोस्ती से बढ़के और प्यार से कम भी एक रिश्ता होता है, जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है। दिशा, दिशा प्लीज, आई एम सॉरी।

दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपने सुना बेपनाह प्यार है। श्रेया घोषाल की आवाज में इस खूबसूरत गीत के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे ईद मिश्र में श्रोताओं का समाचार।

0: है ए गॉर्डन में आ मैच मचे मगर मगा मिली महवाने हा बचिता आ होगा सेम फाइनल मा अमे तोया फ्रांस ने इंग्लैंड ए बगाचे कासो पोजीशन के बने मैच है ए चला पुची जो खिनि माचिनी अनामा कानी बचने असल मिलमा अकगाई बो महो अर्जेंटीना ने स्पेन ए बगाचे फाइनल मैच है चला पुची जैन हो माचिनी अनामा होलोनी बजन असल मिलमा अकगावदा ला होगा इंडिया ने इंग्लैंड ए बगाचे कासो मैच सीरीज माचे बुनी लेना बा मेन्स ओडीआई क्रिकेट मैच है अपनी मंगा बजन असल मिलमा ने कार्डिप अतिकोचे सोफिया गार्डन स्टेडियम मने अखपगा बोदा ला होगा एतानिचे ईद मिसमी आहो अलिमाओ दबाए एचा आकाशवाणी ईटानगर दिवगढ़ नाले ईद मिसमी प्रोग्राम मा एचंता आशे अहोसो खिया महो एतानि हेंदो
1: रोमी मिस थे ताई खामते ईद मिसमी श्रोताओं का समाचार आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz दिल से दिल की बात।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?

दोस्तों आप सुन रहे हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म से दीवाना है देखो अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में। इसी के साथ ही दोस्तों हमने शुरू कर लिया है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे थांगसा श्रोताओं का समाचार। साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज की दूसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा अजपीते में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गैरत तथा तकनीकी अभियंता नंद कुमार। साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा में। और तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपके अपने RJ सुलोकना। तो दोस्तों, आप मुझे यानी आपकी रेडियो साथी RJ दुनिया को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz।

cao năng này academic cao năng là sports tam cao năng apang platforms ta khong mo se cha ro re kam pa ka yang tu mo ro ta india meteorological department imd ro majosa onachal pradesh nang akhau hatam nang rang han jen chi mo ro orange alert ku ta rang jen ro upper siang district nang nai upper siang district nang la kara dadi papom pare nai pare ju kamle district ta nang nari han lo ngoro to state wang disaster management department ra kachai gonta khab lai tung nang report ku to preju ngo machu ata upper siang district nang laksa banga khakso ha khi to parma bang sanad jaga nang rang han janta aro si sirgam korang demru hanang nai lagru hanang la arik gete yungkyung janko nai bomdo ponrung nai mariang paling parju jengging hatam nang lagblai so kham lemtu moro to parma upper swansri district nang lemkyang circle nang nai nachu ra siyum परजु दापरजु साइकिल ताम नंग लारुम खा हा थीरो नै खाम लेम लो बिदा किंगवन मनै रेडिंग केमंग मैमरा माजा किंग नै दिरी रक्मी जिंगमुरी किंगवन मैमरा कोरा रिजो किंगवन मैम नरी हान रंग रोक्त परजु कारादि डिस्ट्रिक्ट नंग ताली टाउन नंग लंगनै खाक्सो हा खितु मुरो नै परम पापम परे डिस्ट्रिक्ट नंग फलांग किमिन हा नंग नै कामले डिस्ट्रिक्ट नंग रागा सर्कल वंग टिक रियो के नंग खाम लेम द आरो किनि पायो डिस्ट्रिक्ट नंग मचो ता वा बयो नै खाक मयंग प रिलीफ केम नंग हाय तोंग रु मुरो द अरुणाचल प्रदेश डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन मनीषा ईटानगर नाम मीटिंग तथुंग प्रजु बजट अनाउंसमेंट 2026 नई 27 जखुंग वंग प्रोजेक्ट ताम काम वंग कयांग रुमान पर रफान तो प्रजु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बजट अनाउंसमेंट पर होमोय नंग अहम सही रंग मोरो डिपार्टमेंट ताम रोग तो नंग एजुकेशन काउ नंग नई हेल्थ केयर काउ नंग रा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई connectivity parma skill development tam kaunang areng satairo rairang molo deputy chief minister ro ta parma communicate phan ra raju revise guidelines per jalaw ma kurang molo da deputy chief minister department tam ma ro ta parma departmental heads tam ro issues tam araju jalaw ma tothum ro re areng projects tam pa ahma sumkarang ma planning department jam ma करुम रो काम सोमरांग वरो डाउ डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिपार्टमेंटल हेड्स ताम रो द अरुणाचल प्रदेश अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर बालो राजा र मनैसा ईटानगर नंग मीटिंग ततुंग तो प्रजु जीरो हानंग नै नामसाई हानंग ला आलो परम तवांग हाताम नंग अन्या म्युनिसिपैलिटीज बलई मानम तानर कामवांग कमुंग नंग रफान द परजु बालो राजा र मामा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टाम र काम सुमरमान रफान तनंग आन्या अर्बन लोकल बॉडीज प मानम काम प जालम सुमरंग ओरो त परम प्रपोजल स्टाम कमुंग नंग रोरी प रसभाइमु कछे है नंग पब्लिक कंसल्टेशन तथुंग रोरे स्टेक होल्डर्स मयंग म फनचेन कुरंग मोरो द मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट तामंग डिप्टी कमिश्नर सेंग मरो त परम फॉर्मेलिटीज कामवांग पो थवाने छि आगो जिलिंग रंगसे बगा तारीख काउ पनंग त तचेरंग मोरो मिनिस्टर बालू राजा र डिपार्टमेंट वांग अजुंग हे मरो त मीटिंग नंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर एडवाइजर परम ईटानगर एमले तेचि कासो नै अर्बन अफेयर्स कमिश्नर विवेक पांडे डॉ आतोंग जंग त परम तवंग डिप्टी कमिश्नर पो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काउलम म कछु त मो रो त पांगसो पास नंग इंडिया ने म्यांमार बॉर्डर ट्रेड पर मचोलिंग रंखु तारीख म तफंग जिखिंग वरो अरुणाचल प्रदेश डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन सोशल मीडिया पोस्ट नंग फांत
पांग करोक चेन है मसुआ पांसो पास पो खुली रहो मुंग नहीं तुम हास रही वंग मेरे ट्रेड पायलाए तो यंग म कुछी पर म मुंग नहीं वंग मेरे ट्रेड पायलाए तो यंग म कुछी पर म मैं यंग तुम का नंग लंबे रक्षी मरोक तो बोरा ट्रेड पो तो यंग जिंग मुंग रहो ट्रेड एसोसिएशन ताम नहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रा पर म म्यांमार फंग वांग मयंग पो सचारां खाम डिप्टी चीफ मिनिस्टर रन बदहु तो वने छि आगो जेलिंग नंग रंगसर बंगा तरिक सा लग मचसे लगसो इंडिपेंडेंस डे सकान पो सिरेंग हाइमु अतंग नंग दिल्ली वांग रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स पो सिंगमु वांग मई म बोन मा तो मानथान अतोंग रेड फोर्ट नंग मुंग र इंडिपेंडेंस डे सेरेंग मरव मचू बलंग कचू पाई ग्रुप खैरव रेड फोर्ट प बोन मंग मरव ऑर्डर प आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई रकुत मचू बलंग फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर नंग मनीरंग मनीरंग पुछ यूनाइटेड स्टेट यूएस नंग एटलांटा स्टेडियम नंग अर्जेंटीना टीम ने इंग्लैंड टीम तुंग नंग तू तो प्रजु अर्जेंटीना र तू वन गोल म चेरो थवन छि देवा सा रंग पु प स्पेन टीम जम फाइनल टू छि क्रिकेट खेल नंग फंगलांग इंडिया ने इंग्लैंड तुंग नंग वन डे इंटरनेशनल ओडीआई मैच प अरुम अरुवांग मचेउरंग जा सेकेंड ओडीआई मैच प इंग्लैंड नंग सोफिया गार्डन नंग रंगजा बंगा बई कमसे मिनिस म तफंग छि रंग छि काउ फर्स्ट ओडीआई प इंडिया र चेई तुंगो रोग रुमरंग इतना थुमरा।

तो श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप अभी ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोता दोस्तों, हर शाम सिर्फ दिन का अंत नहीं होती, कभी कभी नए हौसलों की शुरुआत भी होती है। इन्हीं नए एहसासों और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम में तहे दिल से स्वागत करते हैं। इससे पहले यानी कि दूसरी प्रसारण सभा में आप सुन रहे थे आरजे दुनिया को, और अब से लेकर अगले कुछ घंटों तक यानी कि रात्रि के 9:30 तक मैं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना आपके संग यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर बनी रहूंगी। सुरों की मिठास, दिल को छू लेने वाली बातों और मनोरंजन के रंगों से सजी हुई इस खास महफिल में आपको बताना चाहेंगे कि इस तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं तमाम एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पंचनंद डोले तथा तकनीकी अभियंता तनातुम। तो चलिए दिन भर की भागदौड़ को कुछ देर के लिए विराम दे और बने रहे हमारे संग। अब से कुछ ही पलों में प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन का सेगमेंट गुड इवनिंग ईटानगर।

वाकई दोस्तों, लो सफर शुरू हो गया। सुन रहे थे आप ये गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में फिल्म बागी 2 से। और आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। शायद आपने ये कहानी सुनी हो या फिर ना सुनी हो, पर उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आएगा। तो एक बार की बात है, एक गांव की चार महिलाएं कुएं पर पानी भरने गई। पानी भरते समय चारों महिलाएं इधर उधर की बातें कर रही थी। कुछ समय बाद बातें करने

के बाद वो अपने बेटों की तारीफ करने लगी। पहली महिला बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है, वो संस्कृत विषय का विद्वान हो गया है, बड़े से बड़ा ग्रंथ उसे मूल जुबानी याद है और वह बड़े विश्वविद्यालय में नौकरी भी करने लगा है। दूसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने विज्ञान की पढ़ाई की है, वो वैज्ञानिक बन गया है और एक दिन सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा। और फिर तीसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने अच्छी शिक्षा ली है, वो शिक्षक बन गया है और दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है। ये सब सुनकर जो चौथी महिला थी वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सुन रही थी। तो बाकी महिलाओं से रहा नहीं गया और उन्होंने उस चौथी महिला से पूछ लिया, बहन तुम भी बताओ कि तुम्हारा बेटा आजकल क्या कर रहा है। इस पर चौथी महिला ने थोड़ा संकोच करते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, वो खेतों में काम करता है। ये सब बातचीत होने के बाद चारों महिलाएं पानी का घड़ा लेकर अपने घरों की ओर चलने लगी। तभी पहली महिला का बेटा आता दिखाई दिया। उसने अपनी माँ के साथ अन्य महिलाओं को नमस्कार किया और आगे चला गया। इसी तरह दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी रास्ते में मिले और सभी को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ गए।

0: थोड़ी देर बाद चौथी महिला के बेटे ने जब रास्ते में अपनी माँ को सिर पर पानी का घड़ा लेकर आते देखा तो दौड़ कर आया, उसके सिर से घड़ा उतार लिया और बोला, तुम क्यों चली आई माँ, मुझे कह दिया होता। ये कहकर वो घड़ा अपने सिर पर रख कर घर की ओर चल दिया। तीनों महिलाएं देखती रह गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि शायद आपने ये कहानी सुनी हो या फिर ना भी सुनी होगी, लेकिन हमें ये कहानी बताती है कि जिंदगी में ज्ञान तो जरूरी है ही, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफी नहीं होती। हम सभी में व्यावहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक होता है।
1: Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
2: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे हिंदी, अंग्रेजी और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे नौकते श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। हम आप सभी से पुनः मिलेंगे शाम के 5:05 पर लेकर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्र सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ईटानगर में आज आयोजित एक समारोह में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स परीक्षा 2025 के कुल 111 सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित कर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। भारतीय मौसम विभाग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों में अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने ईटानगर में आयोजित एक बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा बजट घोषणा 2026-27 के अंतर्गत घोषित प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति तथा परियोजनाओं के वित्तीय

0: एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बालू राजा ने ईटानगर में आयोजित एक समीक्षा बैठक में राज्य के जीरो, नामसाई, आलो और तवांग में प्रस्तावित चार नए नगर पालिकाओं के गठन की प्रगति की समीक्षा की। भारत म्यांमार सीमा व्यापार आगामी 20 जुलाई से अरुणाचल प्रदेश के पांगसुपास में पुनः शुरू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE की तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा में शुरू करने का सुझाव दिया। और फुटबॉल में मौजूदा चैंपियंस अर्जेंटीना में अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में कल रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। अब अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा है कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त GDP लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ईटानगर में आज आयोजित एक समारोह में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स PGT परीक्षा 2025 के कुल 111 सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया तथा उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे सुधारों के साथ साथ भर्ती एजेंसियों में सुधार को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक प्रगतिशील समाज को सबसे बड़ा मानदंड होती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने कला, शिक्षा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के युवाओं का प्रदर्शन लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों में अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अपर सियांग, अपर सुबनसिरी, क्रादादी, पापुमपारे और कामले जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के पिछले 24 घंटों के दैनिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अपर सियांग जिले में अब तक 15 भूस्खलन, भारी वर्षा से 7 घटनाएं और 4 बाढ़ की स्थिति दर्ज की गई है। ये घटनाएं जिले के मारियांग, सिरगाम, कोरांग, दामरो, लागरू, आरिक, गत, पालिंग और जेंगंग सर्कल के अंतर्गत जानबो, बोमदो और पोनरुंग क्षेत्रों में हुई है। वहीं अपर सुबनसिरी जिले में लाइमकिंग, नाचो, सीयूम और दापोरिजो सर्कल में 3 भूस्खलन, 3 बाढ़ की घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें बीदाक रेडिंग कैंप, माजा, डिरी, राखमी, जिंगमुरी, रानपोरिजो और कोरारिजो भी प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा क्रादादी जिले के ताली सर्कल स्थित ताली नगर में 2 भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। पापुमपारे जिले के किमिन तथा कामले जिले के रागा सर्कल के तिकरिजो गांव में भी 1-1 बार की घटना दर्ज की गई है। इस बीच कई पान्योर जिले में अब भी 52 लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने ईटानगर में आयोजित एक बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा बजट घोषणा 2026-27 के अंतर्गत घोषित प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति तथा परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को बजट घोषणाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के तेजी लाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, संपर्क व्यवस्था और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को भी किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने आवश्यकता अनुसार संशोधित दिशा निर्देश शीघ्र प्रस्तुत करने तथा धनराशि की आवश्यकता की समय रहते जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागाध्यक्षों को योजना विभाग के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने, समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा सभी प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को सुचारू क्रियान्वयन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बालो राजा ने ईटानगर में आयोजित एक समीक्षा बैठक में राज्य के जीरो, नामसाई, आलो और तवांग में प्रस्तावित चार नए नगर पालिकाओं के गठन की प्रगति की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने संबंधित जिला प्रशासनों द्वारा अब तक की गई प्रगति का आकलन किया और नए शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। भारत म्यांमार सीमा व्यापार आगामी 20 जुलाई से अरुणाचल प्रदेश के पांगसुपास पर पुनः शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि 6 वर्षों से अधिक समय के बाद पांगसुपास खुलने से सीमा क्षेत्रों में लोगों के लिए व्यापार, आजीविका और आपसी जनसंपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम फिर से बहाल होगा। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए व्यापारिक संगठनों, स्थानीय प्रशासन तथा म्यांमार के संबंधित पक्षों सहित सभी हितधारकों को बधाई दी जिनके सामूहिक प्रयासों से यह संभव हो सका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्र सुरक्षा की एक ही दिशा में आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा है कि उन्नत अवसंरचना हमेशा के विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। हमने यह इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री सिंह ने कहा है कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंग ला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है। यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: अब खेल जगत की खबरों के साथ है जागृति सिंह।
4: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6वीं कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों इसे आसानी से अपना सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer regional cooperation to tackle evolving security challenges amid global geopolitical conflicts. He said BIMSTEC member states need to work together and take decisive actions for their mutual benefit. He was speaking at the 5th meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today. Mr. Doval underscored the need for closer cooperation among BIMSTEC member countries to address economic challenges, including disruptions in global supply chains. Mr. Doval highlighted the BIMSTEC bring together the most significant and vibrant regions of the Indian Ocean with a combined GDP of nearly $5 trillion. Mr. Doval also highlighted the importance of stronger cooperation among BIMSTEC.

वेल डियर लिसनर्स, अभी आप सुन रहे थे नौकते श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव से। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है, जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और लीजिए, अब प्रस्तुत है इवनिंग ड्राइव।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम इवनिंग ड्राइव।

नीरज श्रीधर और अंतरा मित्रा की आवाज में गोलमाल 3 का आले, ये गाना सच में एनर्जी का बूस्टर डोज जैसा है, बिल्कुल हमारे अरुण एफएम के लिसनर्स की तरह बेफिक्र और हमेशा मुस्कुराते हुए। वेल दोस्तों, कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव की शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही एनर्जेटिक और मस्ती भरे गीतों के साथ हम बने रहेंगे और आप भी।

गैरी सेंधू, जस्टिन सनलाज और तनिष्क बागची के बीच। सुन रहे थे आप इलीगल वेपन 2.0 और आपको बताना चाहेंगे कि आप बने हुए हमारे संग आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। धमाकेदार नगमे तो बहुत हो गए, स्पीकर भी गर्म हो ही गया होगा, तो चलिए अब टेम्परेचर को थोड़ा कूल डाउन करते हैं। अगला गाना जो मैं आपके लिए पेश करने वाली हूँ, उम्मीद करते हैं कि वो आपके दिल को थोड़ा सुकून देगा।

0: तो उम्मीद करते हैं कि आपके दिल को और हमारे दिल को भी धमाकेदार नगमों के बाद थोड़ा सुकून तो जरूर मिला होगा। कहना चाहेंगे कि इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन फिर आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अब से कुछ ही पलों में पेश करने वाले हैं सोलफुल सूदिंग बॉलीवुड ट्रैक्स यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026 स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, क्या सादगी थी उस दौर के लिखे लफ्जों में। खैर, मोहब्बत का रंग थोड़ा और गहरा करते हैं जब महफिल शाम की हो तो ऐसे नगमे पेश किए जाते हैं। चलिए बढ़ चलते हैं अगले गीत की ओर।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

दोस्तों, अगर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस अंक में हम आपके लिए मिक्स जॉनर्स के नगमे पेश कर रहे हैं। कहते हैं कि मोहब्बत और सुकून किसी एक दौर या किसी एक जॉनर का मोहताज नहीं होते। कभी ये 90s की धीमी धुन में मिलते हैं, तो कभी आजकल के इंडी म्यूजिक में, और कभी किसी पुरानी गजल के पन्नों में। तो इसीलिए आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं मिक्स जॉनर के नगमे इस अंक में। यह अंक है सोलफुल सूदिंग बॉलीवुड ट्रैक्स का। कार्यक्रम का नाम है शाम की महफिल, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाट्सअप अरुणाचल। यह एक वीकली लाइव डिस्कशन कार्यक्रम है जिसे डीडी अरुण प्रभा और आकाशवाणी ईटानगर द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है और मैं हूं आपकी होस्ट पूजा तमंग प्रधान। अरुणाचल प्रदेश अपने पहाड़ी इलाके, खड़ी ढलानों, घने जंगलों और कई तेजी से बहने वाली नदियों के कारण भारत के सबसे आपदा प्रवण राज्यों में से एक है। भारी मॉनसून वर्षा के कारण अरुणाचल एक बार फिर गंभीर बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहा है। लगातार बारिश के कारण नदियों को ओवरफ्लो हो गया है, अचानक बाढ़ आ गई है और पहाड़ी ढलानों को अस्थिर कर दिया है, जिससे कई जिलों में व्यापक भूस्खलन हुआ है। आपदाओं ने रोड कनेक्टिविटी को बाधित किया है, घरों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को क्षतिग्रस्त कर दिया है, हजारों लोगों को प्रभावित किया है और बड़े पैमाने पर बचाव और राहत कार्यों को प्रेरित किया है। व्हाट्सएप अरुणाचल की आज की कड़ी में चर्चा का विषय है बाढ़ और भूस्खलन, यानी फ्लड एंड लैंडस्लाइड इन अरुणाचल प्रदेश। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे बीच मौजूद है एसडीआरएफ, होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस संध्या स्वामी, और हमारे दूसरे गेस्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट यूनिट अरुणाचल प्रदेश के सीनियर जियोलॉजिस्ट अभिनव बोरा। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो पर। चर्चा को जारी करने से पहले आइए, बाढ़ और भूस्खलन ने अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है।
1: अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश तथा कुछ स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं के कारण राज्य के सभी 26 जिलों में बाढ़, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। अपर सियांग, सियांग, क्रा दादी, किए पन्योर और तिरप उन जिलों में शामिल है जहाँ बाढ़ और भूस्खलन का व्यापक प्रभाव देखा गया है। राज्य में अब तक 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा 29 लोग घायल हुए हैं। राज्य के 466 गांवों के 1,02,000 से अधिक लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। कई स्थानों पर सड़कें, पुल, पेयजल योजनाएं, विद्युत आपूर्ति तथा कृषि भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 13 सहित कई सड़कें अवरुद्ध हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करने की अपील की है।
0: तो मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा, जैसे कि आप एसडीआरएफ डिपार्टमेंट से हैं और ऐसे बहुत व्यूअर्स हैं जिन्हें उनके रोल के बारे में मालूम नहीं है, तो आप थोड़े से ब्रीफली आपके रोल के बारे में थोड़े बता दे। तो
2: एज एसपी एसडीआरएफ, मेरा काम है जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसको मैनेज करने का। अभी हमारी एक 137 स्ट्रेंथ फोर्स है जिनको हमने 5 रीजनल सेंटर्स में डिवाइड कर रखा है। उनके हेडक्वार्टर्स जो है अलोंग द वाटर बेसिन्स हमने स्टेशन किया हुआ है फॉर क्विक रिस्पांस, एंड एक ईटानगर में हमारा हेडक्वार्टर है जिसमें 24/7 एक रेडी टीम अवेलेबल रहती है और हमारा हेडक्वार्टर बेस्ड है। और इन सभी रीजनल सेंटर्स इंक्लूडिंग ईटानगर हेडक्वार्टर की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसको हमें मैनेज करना है। ड्यूरिंग लीन टाइम वी फोकस मोस्टली ऑन प्रिपेयरेडनेस ऑफ आर बॉयज ऑफ आर फोर्स, तो उनकी ट्रेनिंग कराना फ्लड रेस्क्यू में, कोलैप्स स्ट्रक्चर रेस्क्यू हो गया, माउंटेनियरिंग जो हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उसमें ट्रेनिंग कराना। तो अभी हमारी टीम काफी छोटी है लेकिन वेल ट्रेन्ड है और क्वालिटेटिवली बहुत अच्छी है। और हमारे जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स है और जो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द कम्युनिटी जो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह ऐड करता है उस पर भी हम काम करते रहते हैं। अभी हमने रिसेंटली रिवर बेसिन्स अलोंग द रिवर बेसिन जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई थी ऑन डिजास्टर प्रिपेयरनेस, जिसमें कुछ 154

0: ट्रेंड हुए थे टू हैंडल इन द इवेंट ऑफ एनी फ्लड लाइक सिचुएशन. कुछ 1180 से ज़्यादा हमने आपदा वॉलेंटियर्स को भी ट्रेन करा है. वी फ्रीक्वेंटली विजिट स्कूल्स टू रेज अवेयरनेस. वी इंटरैक्ट विद द लोकल्स एंड जो कम्युनिटी है उनको डूज एंड डोंट्स के बारे में अवेयरनेस दिलाना, ये हमारा काम नॉर्मली रहता है. और ड्यूरिंग द डिजास्टर फोर्स डिप्लॉयमेंट और स्पेशली इन द इवेंट ऑफ जहाँ पे रोड कट ऑफ हो जाता है और हमारी फोर्स पहुंच नहीं पाती, तो उसको कोऑर्डिनेट करना बाकी जो लाइन एजेंसीज हैं, NDRF हो गई, आर्मी हो गई, BRO हो गया, जो बाकी ITBP हो गई, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सो दैट एनी ऑफ अस वी एक्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेज और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सो दैट हेल्प रीचेज एज सून एज पॉसिबल. और हमारे काफ़ी हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरी होता है विच मेक्स आवर फोर्स वेल इक्विप्ड एंड टू हैंडल एनी काइंड ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन. तो काफ़ी उनकी मेंटेनेंस काफ़ी होती है, उनका जो डेंटिंग पेंटिंग रहता है और उनका जो रिपेयर और डैमेज एंड रिपेयर का जो काम होता है वो हमारा रहता है. बाकी एज एंड व्हेन द स्टेट रिक्वायर्स अस वी कम इन टू फोर्स. प्राइमरी दैट इज व्हाट माय रोल इज.
1: मेरा दूसरा प्रश्न सर आपसे भी इसी तरह का होगा कि रोल GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रोल क्या है, मेजर रोल जो आप थोड़े से हमारे दर्शकों का अगर आप बता दें.
2: जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में लैंडस्लाइड स्टडीज का नोडल एजेंसी है. तो GSI सर्वे ऑफ इंडिया ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल का अलग अलग जगह पे एक ससेप्टिबिलिटी मैप ऑलरेडी बना के रखा है जो मैक्रो स्केल पे है, मतलब 1:50,000 का उसमें है. तो वो मैप में हम लोग ऑलरेडी मार्क किया है कि कौन सा जगह ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी है, लो ससेप्टिबिलिटी है या फिर मीडियम ससेप्टिबिलिटी है. तो जहाँ पे हाई ससेप्टिबिलिटी जोन से उसका ऊपर हम लोग ऑलरेडी मेसो स्केल लेवल पे भी उसको लेके जा रहा है ताकि और डिटेल पे काम हो और क्या क्या फैक्टर्स है उसका और इलेबोरेट हो सकता है. तो ये जो मेसो स्केल है वो 1:10,000 पे होता है और उसके ऊपर भी काम हो रहा है. और वो स्टडीज के द्वारा हम लोग लैंडस्लाइड हैजार्ड मैनेजमेंट मैप भी बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि कौन सा जगह किस हिसाब से उसको टैकल किया जा सकता है, कैसा प्रॉब्लम को मतलब कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है, वो हम लोग अलग अलग जितना भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं. और उसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अर्ली वार्निंग लैंडस्लाइड मतलब अर्ली वार्निंग लैंडस्लाइड का एक प्रोग्राम भी चला रहा है जिसमें ये कोशिश किया जा रहा है कि मतलब एक लैंडस्लाइड होने से पहले हम लोग उसको एक अर्ली वार्निंग के हिसाब से कुछ काम उसमें कर सकता है क्या. तो वो भी ऑलरेडी काम उसके पाइपलाइन में वो भी काम चल रहा है, प्रोजेक्ट उसका चल रहा है. अपार्ट फ्रॉम डेट वन कहीं पे अगर अनफॉर्चुनेट कहीं पे लैंडस्लाइड इंसिडेंस हो जाता है तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पोस्ट डिजास्टर लैंडस्लाइड स्टडीज में भी इन्वॉल्व है, जिसमें रिसेंटली हाल ही में ही हम लोग वो लिकाबली बासर रोड के ऊपर लोअर सियांग जिले में उसके ऊपर भी हम लोग काम करके एक रिपोर्ट जेनरेट करके वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑलरेडी फॉर सर्कुलेशन एंड नेसेसरी अप्रूवल वो भी भेजा गया है जो स्टेक होल्डर्स के साथ वो विद टाइम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो शेयर किया जाएगा.
1: सर आपने जैसे कि अर्ली वार्निंग्स के बारे में बोला, ऐसा उससे यू नो लोकल कम्युनिटीज को आप किस तरह से अवेयर कर सकते हैं जो अर्ली वार्निंग्स है, यू नो हाई रिक्स जो लैंडस्लाइड्स एरिया है, सो डेट यू नो लोग उसे प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर मतलब वो ले सके.
2: जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक आपका मोबाइल एप्लीकेशन ऐप भी डेवलप किया है जिसका नाम है भूस्खलन. तो भूस्खलन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें नॉर्मल पीपल से लेके टेक्निकली साउंड या फिर टेक्निकली अलर्ट पीपल तक भी उसमें रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जिसमें एज एन यूजर और या फिर जनरल पब्लिक या फिर एक्सपर्ट भी उसमें लॉगिन करके हम लोग लैंडस्लाइड रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लैंडस्लाइड के ऊपर उसका न्यूज भी दे सकता है और लैंडस्लाइड रिलेटेड बहुत सारा उसमें जानकारी भी अवेलेबल है. तो एज ए लेमैन तो भूस्खलन ऐप अगर कोई भी उसको डाउनलोड करते हैं फिर कोई भी उसको इस्तेमाल में लेते हैं तो उससे बहुत मदद मिल सकते हैं, स्पेशली दोज वल्नरेबल एरिया जहाँ पे ये है.
1: तो ये ऐप के बारे में कितने तक लोगों को यू नो इसके बारे में अवेयरनेस है या फिर यू नो आप लोग कितने हद तक इसे यू नो शेयर कर पाए हैं.
2: हम लोग असल में इसको अलग अलग

0: माध्यम के थ्रू हम लोग का पोर्टल में, मतलब पोर्टल में भी अवेलेबल है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी होने से भी, या फिर प्रिंट मीडियम में भी होने से भी, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका अवेयरनेस जाए, ताकि लोग इसको यूज़ में ले सके और इससे एक मतलब अच्छा नतीजा निकल के आएगा।
1: मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से बहुत बारिश, हैवी रेनफॉल हो रही है, तो एसडीआरएफ की टीमें को कैसे इस करंट सिचुएशन को कैसे तैनात कर दिया गया है? आपके आपके कर्मियों को एसडीआरएफ कैसे हेल्प कर रही है रिमोट एरियाज पे फिलहाल की करंट सिचुएशन पर?
2: जो हैवी रेनफॉल है, इट इज़ नॉट न्यू थिंग फॉर दिस स्टेट। ये हर साल होता है, बट दिस पर्टिकुलर ईयर जो हमने विटनेस करा है कि देर हैव बिन रिपीटेड मल्टीपल प्रोलॉन्ग्ड स्पेल्स ऑफ हैवी रेनफॉल, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, लैंडस्लाइड्स हुए हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंस में रोड ब्लॉकेजेस हुए हैं। सो दिस टाइम वी फेस द चैलेंज ऑफ एक्चुअली रीचिंग एट द साइट। ये केई पेन्योर में भी हमको डिफिकल्टी आई थी कि हम अपने आदमी को कैसे पहुंचाए। जब केई पेन्योर में वी रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, तो वहां पे जो हमारी आरआरसी, नियरेस्ट आरआरसी जीरो थी, उसने एक्ट किया था, एंड इमीडिएटली पीपल वर इवैक्यूएटेड, दे वर रेस्क्यूड, एंड एक लाइव रेस्क्यू भी हुआ था, अ यंग बॉय हु वाज स्ट्रैंडेड इन द मिडल ऑफ द वाटर। तो अब बैकअप पहुंचाने का इशू आया था कि हाउ डू वी मेक आर टीम रीच, बिकॉज जो रोड कनेक्टेड रोड्स थे दोनों, थ्रू होज एंड थ्रू किमिन, बोथ वर ब्लॉक्ड, एंड द एनडीआरएफ टीम वाज ऑलरेडी स्टेशन इन दोईमोक, दे वर वेटिंग फॉर कि रोड खुल जाए। तो अब बिकॉज वो एक बिल्कुल ऑन गोइंग सिचुएशन था, एंड वी हैड रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन दैट फाइव पीपल वर मिसिंग एंड न्यूमरस आर स्टैंडर्ड एंड लॉट्स ऑफ हाउसेज हैव बीन वॉश्ड अवे, तो वी रिक्वेस्टेड कि हमारे आदमी को हम एयरलिफ्ट करवा लें। तो वी रिक्वेस्टेड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वी ऑल्सो रिक्वेस्टेड द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। सो द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट वॉज वेरी प्रॉम्प्ट, एंड बाय इवनिंग सेम डे एक आईएएफ की हेलीकॉप्टर हैड कम, एंड अराउंड फाइव इश वो हेलीकॉप्टर आ गई थी। एंड नॉर्मली ये प्रोटोकॉल रहता है कि सनसेट के बाद इट बिकम्स अनसेफ फॉर ट्रेवल बाय एयर। सो वी हैड टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, एंड द आईएएफ टीम ऑल्सो वेट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लीविंग नियर सनसेट। तो वी मैनेज टू सेंड इक्विपमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे जो एक बोट था वो इनसफिशियंट था, तो वी हैड टू सेंड बैकअप इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स। बोट्स हमें भेजने की जरूरत थी, तो हमने सबसे पहले इक्विपमेंट को प्रायोरिटी दिया, क्योंकि हमारी ट्रेंड आदमी ऑलरेडी वहां पे थे। सो इनिशियली इन द फर्स्ट ऑर्डी वी सेंड आवर बोट्स एंड सम पर्सनल, फिर नेक्स्ट डे रिमेनिंग पीपल थ्रू आईएएफ एंड थ्रू सिविल हेलीकॉप्टर्स ऑल्सो फ्रॉम नाहरलगुन हेलीपैड इन टू सॉर्टीज, वी वर एबल टू एयरलिफ्ट आवर मैन। एंड इसमें भी काफी कोऑर्डिनेशन लगता है, बिकॉज यू हैव टू, वंस आईएएफ हैज कनेक्टेड विथ यू, देन यू हैव टू गिव देम द कोऑर्डिनेट्स, यू हैव टू गिव देम द लैंड विजुअल्स।
1: तो आप लोग मैम ये कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप लोगों का कोऑर्डिनेशन होता है?
2: सो वी आर ऑलवेज इन टच विद द एसपीज, द डीसीज, एंड जैसे आईएएफ पायलट हो गए, उनके जो कमांडर हो गए, उनके साथ वी वर ऑलवेज इन टच, एंड उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, बिकॉज वी वर नॉट लैंडिंग इन अ नॉर्मल हेलीपैड, इट वॉज अ ग्राउंड, सो उसका पूरा क्लियरेंस होना चाहिए, और वहां पे कोई डेबरी नहीं होना चाहिए और धूल नहीं होनी चाहिए, एंड उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स चाहिए और वेदर रिपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब थोड़े थोड़े दूर में ही वेदर फोरकास्ट अलग होता है। सो ऑल दैट कोऑर्डिनेशन वाज रिक्वायर्ड, एंड इट वाज बीइंग कोऑर्डिनेटेड विद द एसपी, डीसी, माई सेल्फ एंड द आईएएफ पायलट। सो वी वर एबल टू ट्रांसपोर्ट आवर मैन, एंड वी वर ऑल्सो इन टच विद एनडीआरएफ, वी वर ऑल्सो इन टच विद द आर्मी, जो लेपरादा और बाकी जगह पे, इवन अभी रिसेंटली लोहितपुर में एक इंसिडेंट हुआ था, वेयर द इन with the help of army also, we were able to rescue. There was a mudslide in Lohitpur.
1: Okay.
2: So we were able to rescue out of six people. Unfortunately, there were two casualties, and the remaining we were able to rescue.
1: How do you handle such situations? क्योंकि ऐसा होता है कि road connectivity भी you know पूरी तरह से खराब हो जाती है and then air force भी काम क्योंकि due to bad weather
2: yes.
1: you know air force doesn't work.
2: Yes.
1: So how do you handle such kind of situations, challenging situations?
2: So this time we had the situation where there was road connectivity was literally zero. If we take the example of Cape Penior, and on top of that. फ्लाइंग विंडो भी बहुत नैरो होता है सो इन दैट केस पुलिस एंड द कम्युनिटी दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स.
1: मैम हम आप इस पे आएंगे. चर्चा को जारी करते हुए पहले आइए डालते हैं एक नजर केंद्रीय मंत्रियों के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर.
3: अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने राहत और बहाली कार्यों की निगरानी तेज कर दी है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के बाढ़ एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया.
4: आपको पूरा साथ देंगे इसलिए हम लोग
5: जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार मिलकर सब भाई बहन जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनको भरपूर सहयोग करेगी और संकट के पार निकाल के ले.
3: इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम ने भी अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन किया.
6: ये अंतर मंत्रालय जो गृह मंत्रालय के नेतृत्व में टीम आई है नई दिल्ली से वो अरुणाचल प्रदेश में जो अभी रिसेंट फ्लैश फ्लड हुआ बहुत बारिश हुई उसकी वजह से जो डैमेज हुआ जो डिजास्टर आया है उस आपदा का असेसमेंट करने के लिए टीम आई है.
3: दल ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षति राहत कार्यों और प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक सहायता की जानकारी ली.
1: जैसे कि मैम मैं आपसे बात कर रही थी रोड कनेक्टिविटी की वजह से यू नो एयरफोर्स के यू नो जितने भी बैड वेदर के कारण अगर यू नो वो नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग कैसे हैंडल जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज जो रिमोट एरियाज पे मेडिसिन या फिर खाना पीना राशन जो भी है वो वैसे सिचुएशन में आप लोग कैसे हैंडल करते हैं जो लोगों तक पहुंचानी होती है.
2: सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्राइमरीली वो रिलीफ एंड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने में लीड करता है. सो बेसिकली हमारा जो रोल है वो जो इनिशियल इमीडिएटली जो आफ्टर डिजास्टर जो सर्च एंड रेस्क्यू जो एक नैरो विंडो होता है उसमें काम करने का होता है और इट इज अ वेरी नैरो विंडो एंड टाइम इज प्रेशियस. सो इमीडिएटली वन हैज टू एक्ट. तो वहां पे जो भी उस इंसिडेंट के विसिनिटी में चाहे वो SDRF हो गया चाहे वो कम्युनिटी हो गया चाहे वो लोकल पुलिस आर्मी NDRF हूएवर इज प्रेजेंट दे फर्स्ट रिएक्ट एंड जो बैकअप है वो असेसमेंट किया जाता है कि बैकअप को इमीडिएटली जल्द से जल्द कैसे पहुंचाया जाए क्योंकि बैकअप के साथ इक्विपमेंट हैवी इक्विपमेंट भी होता है. सो इफ एयर गुड इनफ बट इफ नॉट एयर देन वी आर ऑलवेज ऑल्सो प्रिपेयर्ड टू टेक द चैलेंज ऑफ वॉकिंग ऑन फुट एंड आवर SDRF बॉयज आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड दे आर वेल ट्रेन्ड एंड they have been trained to face adverse challenges and difficult situations work for long hours so if need be then we also have to go by foot and wait for the window to open up for the heli and meanwhile jo wahan pe jo already present hain
1: ji
2: unka capacity jo hai usko utilize karte hain.
1: सर अभिनव सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अपार्ट फ्रॉम नेचुरल फैक्टर्स यू नो ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है यू नो अनप्लान्ड ह्यूमन एक्टिविटीज क्या ऐसा भी रीजन हो सकता है लैंडस्लाइड्स को यू नो बहुत रिस्क यू नो पैदा करते हैं.
0: लैंडस्लाइड ऑकरेंस असल में हम लोग ब्रॉडली हम लोग दो विभाग पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. एक है आपका नेचुरली कॉज लैंडस्लाइड और एक है एंथ्रोपोजेनिक कॉज लैंडस्लाइड. जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज लैंडस्लाइड है वो आपका डिपेंड करता है मेनली आपका उस जगह पे कैसे लैंड यूज लैंड कवर है. मतलब कहीं पे अगर अनप्लान हिसाब से घर बन रहा है, आपका स्लोप कटिंग हो रहा है या फिर जो रोड वाइडनिंग है वो हो रहा है, अगर उसका प्रॉपर साइंटिफिक वे से नहीं हो रहा है और जो नेचुरल या फिर जो आपका फ्लो है, मतलब एक रिवर है या स्ट्रीम है, अगर उसमें कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के लिए या फिर आदमी को इस काम करने के लिए उसका अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो बहुत सारा जगह पे या बहुत सारा सीनरी पे ये देखा गया है कि एंथ्रोपोजेनिक रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी लैंडस्लाइड होता है और वो काफी मतलब इफेक्ट भी करता है कम्युनिटीज को भी, लोगों को भी.
1: जी जी. तो सर, ऐसा अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है जो खास डिस्ट्रिक्ट और या जियोलॉजिकल जोन जिसमें हाई रिस्क है?
0: जैसे मैं आपको बोला, जो हम लोग का पहले जो माइक्रो स्केल वाला जो लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप था उसमें ही हम लोग काफी सारा जगह पे आइडेंटिफाई किया है जो ससेप्टिबिलिटी वाइज थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहा है, तो वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है. अभी जैसे मान लीजिए कहीं पे कुछ रोड स्ट्रेचेस, जैसे अभी बसर लिकावली फॉर एग्जांपल जो रोड स्ट्रेच है वो काफी वल्नरेबल था. रिसेंटली वो मागी बस्ती के पास में अराउंड स्ट्रेच ऑफ आई थिंक अराउंड 110 टू 120 मीटर्स वो कंप्लीट डैमेज हो गया है, जिसमें कम्युनिकेशन बहुत दिन के लिए टोटली स्टॉप्ड हो गया, व्हीकुलर मूवमेंट केम टू एन हॉल्ट. और उसका नीचे से एक नदी भी बह रही है सीजी रिवर बोल के, जिसका भी वो लैंडस्लाइड के साथ एक काफी इम्पेक्ट रहा है उसका ऑकरेंस पे. तो ऐसा काफी सारा जगह है जिसमें वो लैंडस्लाइड प्रोन बनता है वो एरिया, और उसमें रिपीटेडली या फिर फ्रिक्वेंटली लैंडस्लाइड होने का चांसेस या फिर संभावना रहता है.
1: जी सर, ये तो हमें मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश इज हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, बट व्हाट आर द मेजर जियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट मेक द स्टेट सो वल्नरेबल?
0: तो मेजर जियोलॉजिकल फैक्टर्स होने से एक है आपका जो लैंड कवर, मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे कैसे स्लो फॉर्मिंग मटेरियल है, यहाँ पे आपका बहुत सारा जगह पे जहाँ पे लैंडस्लाइड ज्यादा होता है या फिर ज्यादा मतलब ह्यूज डायमेंशन का देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे आपका जो स्लो फॉर्मिंग मटेरियल रहता है वो काफी मतलब वीक रहता है या फिर इनकम्पेटेबल रहता है, जिसमें जब भारी बारिश होता है तो रेनफॉल इज वन ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है जो मतलब एक लैंडस्लाइड को ट्रिगर करता है अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स. तो वो सब कंबाइन होके, और अगर मान लीजिए उसका जो बेडिंग है या फिर जहाँ पे रॉक एक्सपोज है, अगर वो अलोंग द स्लोप जहाँ पे ढलान है अगर उसी दिशा में उसका ओरिएंटेशन भी उसी दिशा में है तो ये भी एक रोल रहता है. और जो लिथोलॉजी रहता है उसका भी काफी रोल रहता है, मतलब किस टाइप का रॉक है, अगर वो इनकम्पेटेबल या फिर वीक रॉक रहता है तो उसमें या फिर वो जॉइंट्स वगैरह अगर ज्यादा रहता है तो वो फेल होने का उसके चांसेस ज्यादा रहता है. और अगर बहुत ज्यादा बारिश होता है, मतलब रेनफॉल इज वन ऑफ द मेजर ट्रिगरिंग फैक्टर्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ द लैंडस्लाइड्स ऑकरिंग इन अरुणाचल अभी हाल ही में जो हो रहा है उसमें.
1: सर, आपके इसी जवाब पे मैं और एक कुछ जोड़ना चाहती हूँ. जैसे कि अरुणाचल प्रदेश बहुत ही दुर्गम एक जगह है, यू नो रिमोट इंटीरियर जगह है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों को किस तरह की यू नो प्रिवेंटिव मेजर्स की जरूरतें हैं, या फिर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि ऐसी दुर्घटनाएं यू नो कम हो?
0: लोगों को मेरा हिसाब से लोगों को बीच में ये अवेयरनेस थोड़ा होना चाहिए कि लैंडस्लाइड का अर्ली सिम्टम्स कैसा रहता है. जैसे मान लीजिए कहीं पे एक स्लोप पे अगर या फिर कहीं पे एक रोड स्ट्रेस पे दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा क्रैक्स अपीयर हो रहा है या फिर वो थोड़ा दब गया है, मतलब सब्सिडेंस हो गया है, तो उसको थोड़ा वो लोग को मतलब लोगों को अलर्ट होना होगा कि थोड़ा देखना होगा अगर वो ज्यादा हो रहा है या फिर उसका डायमेंशन बढ़ रहा है, छोटा से बड़ा हो रहा है, तो उसको तुरंत जो मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर कंसर्न ऑफिशियल से उनको बोलना चाहिए. और अगर काफी बारिश हो रहा है और ऐसे जगह पे जहाँ पे पहले भी लैंडस्लाइड हुआ है तो वहां से थोड़ा दूर एरिया पे, थोड़ा सेफ एरिया पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है. ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ पे लैंडस्लाइड पहले भी हुआ है उसी का आजू बाजू में या फिर उसी का नीचे में ही कहीं पे घर वगैरह बना दे, तो वो थोड़ा थोड़ा करके प्रिकॉशंस लेने से लैंडस्लाइड का जितना भी डैमेजेस रहता है वो काफी हद तक उसको कवर किया जा सकता है.
1: मैम आपसे मेरा सवाल रहेगा, इस साल हमें यू नो बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग यू नो डिज़ास्टर

0: का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यू नो बेसिकली लोगों को यू नो पहले प्रिपेयर्ड रहते थे फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, क्योंकि यहाँ पे कॉमन था मॉनसून के सीजन पर इस बार का जो यू नो फ्लैश फ्लड जो हुआ है, आप लोगों के इस साल मतलब आप लोगों को ऐसा कौन सा ऑपरेशनल चैलेंजेस आया है आप लोगों के कर्मियों को इस साल के इस फ्लड के समय पर?
1: इस बार जो हमें यूनिक चैलेंज स्पेसिफिकली आया है, फर्स्ट वाज कि देर वर मल्टीपल यू नो लैंडस्लाइड एंड फ्लैश फ्लड स्ट्रक डिस्ट्रिक्ट्स एट वंस। एक छोटे से विंडो में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये वाला चैलेंज आ गया है। सो इट वाज आल्सो अबाउट मैनेजिंग मेन एंड हाउ टू डिप्लॉय देम, बिकॉज वी आर अ स्मॉल फोर्स एज ऑफ नाउ। सो वी हैड टू यूज द कम्बाइंड स्ट्रेंथ of this state, all the other agencies were there, administration was there, local volunteers, then we all had to chip in and use whatever resources were available there. एक तो connectivity वाला issue तो जैसे हमने discuss कर ही लिया elaborately, एक जो है वो है carrying, taking the equipment, क्योंकि we are dealing with boats, we are dealing with heavy engines and generators and you know जो backup for example cylinder खत्म हो जाता है तो उसको भरने के लिए भी एक मशीन होती है, फिर राफ्ट में छेद हो जाता है कई बार चलाते चलाते, उसमें हवा भरने की जरूरत है, सो ऑल दीज एक्सेसरीज भी होते हैं, फिर लाइटिंग भी रिक्वायर्ड होता है when we go for search and rescue after dawn, एंड पेरिफेरनेलिया है पूरा अच्छा खासा, तो उसको कैरी करने का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एवरीथिंग इज नॉट एक्सेसिबल बाय रोड, वी हैव आवर बॉयज हु हैव बीन मतलब पतली पतली जो पाथवेज हैं उसमें अपना मशीन को कैरी करके जा रहे हैं, दे ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज एक स्लिप मींस आदमी भी गया और सामान भी गया, एंड जो पूरा पर्पस है वो डिफाई हो गया बिकॉज इक्विपमेंट्स आर स्कार्स, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं दैट इज आवर मेन स्ट्रेंथ, एंड मेंटल फटीग भी एक चैलेंज आ जाता है बिकॉज सम ऑफ द ऑपरेशंस गो फॉर वेरी लॉन्ग, द केप एन्योर में एटलीस्ट 8 days तक सर्च एंड रेस्क्यू चला, सो वी डिवाइडेड इनटू 2 teams एंड एक सुबह और एक शाम, तो लॉन्ग आवर्स रेस्क्यू चलता है, तो एक मेंटल फटीग भी है, स्ट्रेंथ अभी कम है तो उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है, ड्यूरिंग दी जब एक साथ इतने हमें अफेक्टेड हो जाता है डिस्ट्रिक्ट्स, तो हमारी मशीनरी भी बहुत यूज हो रही है एंड वेयर एंड टेयर भी बहुत हो रहा है, तो इमीडिएटली उसका जो रिपेयर मेंटेनेंस वो भी हमको देखना पड़ता है, देन वी ऑल्सो हैव टू केटर फॉर द जो हमारी जो टीम है उनका वेलफेयर भी देखना पड़ता है बिकॉज it is a very risky job that they are doing,
0: yes, yes.
1: And there is a very thin line of difference between a rescuer and a normal person, it is just ki wo confident hai kyunki wo trained hai, but in a matter of time they can also be at risk, so it is very risky and we have to prepare them mentally also,
0: yes,
1: and so these challenges do exist ऑपरेशन।
0: यू नो लास्ट में आप यू नो क्या आप संदेश देना चाहेंगे यू नो हमारे सिटीजन्स को यू नो ताकि वो सावधानी बरते, प्रिवेंटिव मेजर्स आपकी तरफ से कुछ मैसेज अगर देना चाहता हूँ?
1: मेरी तरफ से यही मैसेज है जो आपने, कोई नया मैसेज नहीं है, आपने बहुत बार सुना होगा और हमने बहुत बार दोहराया भी है, सो बेसिकली सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट है एक्सेप्टेंस कि यस एक वल्नरेबल एरिया में हम लोग रहते हैं, तो एक मैपिंग आपको अपने लिए कर लेना है कि हमारा जो घर है और हमारा जो ऑफिस या बिल्डिंग जो भी है वो एक वल्नरेबल एरिया में है, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, और जो भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है उसको प्रॉपरली फॉलो करना है, रूमर्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, और वी शुड हैव द कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ द इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, बेसिक आपको जो मेडिकल एड फर्स्ट एड वो अपने लिए आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हेड इंजरी हो गई या आपका कोई हैंड यू नो हेवीली इंजर्ड हो गया है, कुछ भी हो गया, तो बेसिक हाउ टू रैप, हाउ टू बैंडेज, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज कोई भी हेल्प आएगी, इवन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी आएगा, तो देर विल बी अ टाइम गैप, सो उससे पहले आपको रेडी रखना है, आपकी इमरजेंसी किट जो है जब एक आपको पता है और इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि हैवी रेनफॉल है, आपको वार्निंग मिल रहा है, अलर्ट्स आ रहे हैं, तो इमरजेंसी किट तैयार रखना है. उसमें आपका फूड होना चाहिए प्रॉपर, पैकेज फूड, कैंड फूड, आपका पानी स्टोर्ड होना चाहिए प्रॉपर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स. और ड्यूरिंग जो हमारा फ्लड रहता है, हम लोग बहुत डिले करते हैं इवैक्यूएट करने में. तो इमीडिएटली जैसे ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन आता है कि इवैक्यूएशन करना है, तो वी शुड नॉट थिंक अबाउट बिलोंगिंग्स लेना है या सामान लेना है, वो रखना है. यू शुड इमीडिएटली, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ सेकेंड्स दैट जो हैवी रेनफॉल से वो फ्लैश फ्लड डेवलप हो जाता है. तो इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट मिनट्स एंड सेकेंड्स दैट आपको रिएक्शन का टाइम भी नहीं मिलेगा. सो वेन एवर देर इज एन इनपुट की देर इज अ राइज इन वाटर लेवल या हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो यू शुड इमीडिएटली लिसन टू द अथॉरिटीज एंड इवैक्यूएट. और जो फ्लडेड वाटर्स है उसमें बहुत ही केयरफुली कदम रखना है. कदम रखना ही नहीं है, हायर ग्राउंड इमीडिएटली यू शुड गो, क्योंकि जो फ्लड वाटर का जो फोर्स होता है वो भी हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. इवन अ काफ लेंथ वाटर ऑफ लेवल ऑफ वाटर इज एक्सट्रीमली फोर्सफुल. इट हैज ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स टू यू नो वॉश अवे ह्यूमन बींग्स, व्हीकल्स, एंड इनफैक्ट हैवी व्हीकल्स. एज वी सी द इम्पैक्ट ऑफ द लैंडस्लाइड विच अकर्ड इन द सीजी रिवर, इट कम्प्लीटली डैम्ड द रिवर. सो दैट इज द फोर्स ऑफ एनी लैंडस्लाइड. एंड बींग इन टच विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट फॉलोइंग एनी रूमर्स. एंड अगर आपका कोई मोबाइल कनेक्टिविटी भी कट ऑफ हो जाता है या नेटवर्क बिजली सब कट ऑफ हो जाती है, तो इन दैट सिचुएशन भी आपको पैनिक नहीं करना है और आपको कॉमन सेंस इंटैक्ट रखना है इन द इवेंट ऑफ एनी मिस हैपनिंग. बिकॉज यू नीड टू बिलीव, और एक अश्योरेंस होना चाहिए आपको कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है एंड द गवर्नमेंट, it is trying its best to reach you and provide the basic necessities well in time.
0: जी बिल्कुल, आशा करती हूँ कि फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स पर आज की चर्चा
2: श्री आकाशवाणी ईटानगर है सुपाक्सियम के अधिप भूमि रबलेंदों तन्नाकदिंग केरलम पर लोतालोक तत्पाये लुबिना से तबांग ताली पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर्स एग्जामिनेशन 2025 बेताग्लॉक परीक्षा विकल लिंक अतल कोला इंग अतल कोलांग अतल कैंडिडेट्स पानाकिंग एम अरुणाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ईटानगर लो बबू महिल इवम दला एपॉइंटमेंट ऑर्डर काकोरेम इवम तुम चीफ मिनिस्टर पेमा कांडुब पेबगम लो पकान बदने स्टेट हॉक रिक्रूटिंग एजेंसी किडिंग सेक्टर्स तकम लो आईना आयन लोक आगेरेम इगे बदप बदुंग देखे सोसाइटी के आईनाम लगा पर देलोक इला एजुकेशन सेक्टर एम आई पर अलग बमदुंग देलोक स्टेट गवर्नमेंट आर्ट्स एकेडमिक स्पोर्ट्स ताबो हम कम आई पर तोलिक बदुंग एमला दुकान बिदो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ऑरेंज वार्निंग एम बिकान बम तो अरुणाचल प्रदेश लोक मोले तुंगकन कलो पेदों बजे रूप स्टेट हक आंगो डिस्ट्रिक्ट अपर सियांग अपर सिवनश्री कारादादी पापुम पारे देलोके कामले डिस्ट्रिक्ट लो बजे आप पदोंगे ओए एमला लुकान बिलेन टू स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने लुकान बियर बनाम लो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट लो एंगातल कोला आंगो 15 कप राकेट अबम तुबों 24 आवर्स मोदी गौरा लो देलोके सिरगम कोरांग दामरो लागरू आरो गेते यिंक्यों जान बबम दो देलोके पनरुंग एमआईसी मारियांग इंक्यों पालिंग देलोक जेंगिंग सर्कुल लो पदोंगे बजेपे ओला सिबुग राके दे बजेपे इरे बमतु अपर सिवनश्री डिस्ट्रिक्ट लोक लाइमिकेंग नासो सियुम देलोक दापरिजो सर्कुल बिदाक रेडिंग केम माजा दुरी रकमी जिंगमुरी रापेन रिजो देलोक कोरा रिजो दोलुं की दिलोकम सेवुग इरे बमतुंग देलोक कारादादी डिस्ट्रिक्ट ताली किल्ला ताली सर्कुल देलोक किमिन पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट देलोक टिक रिजु रागा सर्कुल कामला डिस्ट्रिक्ट लोकम बजे रूपे पदों इरे बमतुंग देलोक दोलुंगामी के दिंगे रिलीफ केम लोकम बजे को कई पानोर डिस्ट्रिक्ट लोक दुंगे दुंग डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सोना मेन बे 2026-27 लोक बजेट लुकान बिलन नम आवा लोक की प्रोजेक्ट लोक kebangam melo duten botungku. Telok ke Deputy Chief Minister bu Department tabungam lulik bomdola education, health care, drinking, water supply, connectivity, telok ke skill development aipa. Ibadop lugablik bomtung telok ke departments kedingam ane guidelines emkom iligru lik botokupa oleh bomtung. Deputy Chief Minister bu pebokke bangakom lo departmental heads kedinge planning department em project agar iligru lik bonam lo laka bohidopakom lulik bomtung. Urban Affairs Minister Baloraja bu meloke gike nadi ko delo jiro alo delo ketuang lo akpi ane municipality sim ilik botop melo Itanagar lo kebang andung ke botung keba delo minister bu urban local body sim ilanda op district administration elamum ige botop lulik bomtung raja bu deputy commissioner concerned district lokam extensive public consultation emibom la public em kenda palula proposal ulen bomnam hem ai pa iligrulik bodop ilangkam lulik bomtung de lok municipalities hem ilig bomnam lo apena polo lo 15 tarik long elapa ilig ganana requisite formalities em in da pa lulik bomtung Itanagar MLA de lok advisor to minister urban affairs tesikaso commissioner urban APRS Vivek Pandey Bulukom Kevadelo Domin Gaboto Deputy Commissioner Tuang Lokke Kom Barsweli Kevangam Domin Gaboto Emla Agumam Bikarnentu Indian Myanmar Border Tetam Idokupa Pangshu Fasan July 4 Holok Bomong Loingani Longala Bomolorungam Rulik Bomtung Deputy Chief Minister Sonamen Bi Lukan Bidone Pangshu Fas Luyu Holok Border Law Duna Communities Kiringe Pangke Dokkepa Ditak Takin Kopa Ilan Bonama Idung Deputy Chief Minister with Trade Association Local Administration the local Myanmar counterparts Tabungam Torgurla Aipa Pahikore Agerhim Ivam Dung Emla Koidola Social Media Post Lo Bikan Len Bomtung Nolulu Tadagum Hem Akaswani Itanagar Loka Tatpadung Delhi's iconic Red Fort Complex and 80 Independence Day celebration 15 August Lodum Lagapa Itum Potung Archaeological Survey of India Order Kakotim National Celebration Lemulagang Paitung Emla Lukan Gabotung Ministry of Railways at Ticket Lapanam Lagapa Ani Beta Version Ko India Railway Catering the Local Tourism Corporation Ko Ilan Botung FIFA Football World Cup Championship Depending Championship Argentina England 2-1 Lok Golem Bigum la final lo hadung Argentina elang England Atlanta Stadium USA lo gikena yodelo tukuhito final match en July 4 holok bomong loinga nilonga elo tuem na lukan bitu India elang England Sofia Gardens Cardiff lo men's cricket second one day international three match series em huimka 5:30 pm lok Europe len bomem lukan bitu sim kaluta den debong

वेलकम बैक डियर लिसनर्स. अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार, और उससे पहले आप सुन रहे थे हमारा विशेष वीकली कार्यक्रम व्हाट्सअप अरुणाचल. तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम आज के कलाकार का, और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप आदि श्रोताओं का कार्यक्रम पूरा सुनना चाहते हैं तो आप अभी ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा DRM 666 किलो हर्ट्स पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: विश्वास नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सुलोकना, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। अभी आप सुन रहे थे अभी तो पार्टी शुरू हुई है फिल्म खूबसूरत से, और इसी गीत के साथ ही हमने आगाज कर लिया है कार्यक्रम आज के कलाकार का। और हमारे आज के कलाकार है बादशाह।

तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बादशाह का असली नाम क्या है? तो बता दें आपको कि उनका पूरा नाम है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, यानी बादशाह। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग छोड़कर म्यूजिक का रास्ता चुना था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ग्राउंड लेवल से की। इंडिपेंडेंट गानों से लेकर बॉलीवुड के मेगा हिट्स तक का सफर उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर तय किया।

0: वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर मेरे यानी आपके रेडियो दोस्त सुलोकना के संग। और जी हाँ, आज के इस अंक के कलाकार हैं बादशाह, जिनका पूरा नाम है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। बादशाह ने अपने करियर की शुरुआत ईयर 2006 में मशहूर रैपर यो हनी सिंह के साथ की थी। इसके बाद 2012 में उन्होंने अपना पहला सोलो गाना डीजे वाले बाबू रिलीज किया, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: सुन रहे थे आप तरीफा फिल्म वीरे दी वेडिंग से. और जी हाँ, ये है कार्यक्रम आज के कलाकार आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर. आज हम पेश कर रहे हैं बादशाह के नगमे. बादशाह यानी आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया के गाने, और साथ ही बातें भी कर रहे हैं बादशाह की. तो दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि संगीत में करियर बनाने से पहले बादशाह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी. उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज PEC से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी. उन्होंने अपने माता पिता को खुश करने के लिए पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में उनका पूरा ध्यान संगीत पर ही चला गया. उनके गानों के बगैर पार्टी अधूरी सी लगती है. बादशाह ने सिर्फ गानों में ही नहीं बल्कि टीवी पर भी अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने कई बड़े रियलिटी शोज में जज के रूप में नजर आ चुके हैं.

तो दोस्तों, इसी नगमे के साथ ही कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो के साथ।

0: वेल दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स तथा DRM 666 किलोहर्ट्स पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM है, जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 MHz पर। और अब से कुछ ही पलों में हम आप सभी के लिए पेश करने वाले हैं हिंदी फिल्मी नगमे। हिंदी फिल्मी नगमों के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वारी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

और दोस्तों, आप बने हुए हैं अरुण एफएम के संग, सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कारवा। आपको बताना चाहेंगे कि ये सिलसिला रात्रि के 8 बजे तक बना रहेगा, तो इसीलिए इस अंक में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं बैक टू बैक हिंदी फिल्मी नगमे, लेकिन कुछ ब्रेक्स के साथ। कहते हैं ना कि प्रोग्राम में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी ब्रेक्स लेना जरूरी है। इसी नोट पर चलिए बढ़ चलते हैं अगले गीत की ओर।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

0: कुमार सानू की आवाज में अभी आप सुन रहे थे जान तेरे नाम से, अखा इंडिया जानता है। इनफैक्ट आप सुन रहे थे टाइटल सॉन्ग, और आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा था कि इस अंक में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं बैक टू बैक हिंदी फिल्म नगमे कुछ ब्रेक्स के साथ, तो इस ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं अगले गीत की ओर।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी।

तो दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं दिल ना जाने आ फिल्म गुड न्यूज से आपको बताना चाहेंगे कि इन्हीं नगमों के संग कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे क्षेत्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अतः। दोस्तों, आजकल हम अपने ऊपर काम करने से ज्यादा कंपैरिजन में वक्त जाया करते हैं। मैं ये नहीं बन पाया या बन पाई, मेरे दोस्त के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। न जाने कितनी बातें सोचकर हम अपने दिमाग पे बहुत बड़ा सा बोझ डाल के बैठ जाते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगी, ये सारी बातें ना वक्त जाया करने से ज्यादा कुछ नहीं है। किसी को देखकर खुद को उनके साथ कंपेयर करके क्यों दिल को छोटा करना है, बल्कि अपने हिस्से का मेहनत करते रहना है और खुद से बनाई इस जिंदगी को शान से जीना है। कहते हैं ना, कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह नहीं देना चाहिए, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामी दिल में मायूस पैदा करती है। जी हाँ श्रोताओं, इतनी सारी भूमिका मैं यूं ही नहीं बांध रही हूँ। कार्यक्रम का पहला गीत मायूसी से भरा है तो सोचा कि आपको पहले ही आगाह कर दूं। तागिन गीत है तारा कोदा की आवाज में, चलिए आनंद लेते हैं।

श्रोता सुन रहे थे दाम्पी जिलेन की आवाज में गालो गीत। आपने ट्यून किया है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज और कार्यक्रम चल रहा है अपना गीत। अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें ईटानगर से बाहर भी सुन सकते हैं। बस आपको अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड करना है न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज यानी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज पर क्लिक करना है और इसी तरह आप हमें सुन सकते हैं देश के किसी भी कोने से। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अजाती मीमी की आवाज में सुनते हैं ईदू गीत।

दोस्तों, अगर देखा जाए तो कई उतार चढ़ाव, खुशी गम, अपने पराए, सफलता असफलता, इन सभी चीजों के बाद अंत में मंजिल जो है ना, मन की या आत्मा की शांति ही होती है। और एक बात बताओ आपको, ये जो मन है ना, इसको शांत करना भी एक कला है जो अक्सर लोगों को नहीं आती। जी हाँ, तो इस कार्यक्रम में आपको मैं बताने वाली हूँ वो एक शब्द, एक ही शब्द लगते हैं इस मन को शांत करने के लिए। ना ना, पहेलियां नहीं बुझा रही हूँ, बता रही हूँ कि ये जो स्वीकार शब्द है, स्वीकार यानी कि एक्सेप्टेंस, यही वो एक शब्द है, वो मंत्र है जो हमें शांति देता है। अगर हम खुद को, आसपास की चीजों को या हालातों को स्वीकारते हैं तो इस मन को यहाँ वहाँ दौड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मगर ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्याय को स्वीकार करें, अत्याचार को स्वीकार करें, बिल्कुल भी नहीं। और हालातों को स्वीकार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं

कि हम कोशिश करना बंद कर दें, हम मेहनत करना बंद कर दें और हम उम्मीद करना बंद कर दें। लेकिन जिस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिस हालात को हम बदल नहीं सकते, उस चीज को स्वीकारना, उस चीज के साथ चलना, उसी को स्वीकारना कहते हैं। एक बार करके देखिए। तो चलिए अब एक और गीत सुनाने का वक्त हो चला है और ये गीत है चेरा तारिंग की आवाज में, निशी भाषा में।

श्रोता तक गुल्लेगो की आवाज में आप सुन रहे थे आदि गीत, और इसी आदि गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आशा है आपको कार्यक्रम पसंद आए होंगे, और इसी आशा के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

0: सुन रहे थे आप क्षेत्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers

0: handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Day Pro Plus with surround sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: सो श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए, अब प्रस्तुत है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कारवा, भूले बिस्तरे गीत।

बिल्कुल श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कारवा। सुन रहे थे आप वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आ गले लग जा से। कार्यक्रम में अगला नगमा है वादा कर ले साजना, लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म हाथ की सफाई से।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

0: चौदहवीं का चांद। इसी के साथ ही सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कारवा आज यहीं पर संपन्न होता है और साथ ही अब हम हमारी तीसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। श्रोता दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे थे तमाम FM ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पंचनन डोले, तकनीकी अभियंता ताना आतुम और मैं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना। चलते चलते आपको बता दें कि अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे FM गोल से रिलेट कार्यक्रम। हम आप सभी से पुनः मिलेंगे सुबह के 5:48 से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभरात्रि। जय हिंद।
1: And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced level 2 ADAS? Yes. Smart power tailgate with gesture control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh. And then

0: Wait. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, भारत कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत जहां एक तरफ बहुतायत में अनाज या अन्न का उत्पादन करता है, तो दूसरी तरफ भारत की जो खेती है वो वैज्ञानिक और उन्नत है और तकनीकी रूप से सक्षम है। भारत की खेती को इतना उन्नत, तकनीकी रूप से सक्षम और भारत के अन्न भंडारों को लगातार भरने का जो एक बीड़ा उठाते हैं हमारे कृषक उठाते हैं, लेकिन कृषकों के समर्थन और उनकी सहायता के लिए बहुत से संस्थान भी काम करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक ऐसा ही संस्थान है जिसने लगभग 98 वर्षों से देश की सेवा की है, कृषि क्षेत्र को लगातार समृद्ध बनाया है। तो आज हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98 स्थापना दिवस के अवसर पर और जिस तरह से इस संस्थान ने भारत को कृषि प्रधान देश और उन्नत कृषि के मामले में सक्षम बनाने में जो भूमिका निभाई है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट कार्यक्रम में जुड़े हैं। डॉक्टर मांगीलाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो आपको जो ये लंबा सफर रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का और 98वां जो स्थापना दिवस मनाया है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और चर्चा की शुरुआत इससे ही करते हैं कि जो ये एक पूरा सफर रहा है, कैसे आप देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारत की खेती के लिहाज से इस सफर को, क्या सबसे बड़ा योगदान आप मानते हैं इस संस्थान का?
2: धन्यवाद। सबसे तो पहले मैं आज अपने श्रोताओं को, स्पेशली हमारे किसानों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज इस 98वें स्थापना दिवस के मौके पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97 साल का ये सफर, क्योंकि 98वां स्थापना दिवस आज मनाया है, काफी गौरवशाली रहा है। यदि आप देखें तो हम खाद्यान्न में, हॉर्टिकल्चर में, लाइव स्टॉक सेक्टर में, फिशरीज सेक्टर में हमने जो सफर तय किया है वो बहुत अद्भुत है। हमें आयात पर निर्भर होना होता था। आज हमारे देश में अन्न के भंडार इतने भरे हुए हैं। आज हमारा जो एवर हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन जो इस साल का मैं बताऊं आपको, 376.7 मिलियन टन हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, 377 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, मिल्क का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, लगभग 20 मिलियन टन के आसपास फिश का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट। ये सारा का सारा जो जितना हुआ है, इसके बैकग्राउंड में विज्ञान, तकनीकी, पॉलिसी, किसानों की मेहनत सारा शामिल है। और ये पूरा इकोसिस्टम के साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूरे देश में काम करता है। ये विश्व का एक सबसे बड़ा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हमारे जो 114 संस्थान, हमारे 731 कृषि विज्ञान केंद्र है जिनको हम काम करते हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है 80, उनके साथ में काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है
1: जी।
2: और काफी हमने प्रगति की है। और स्पेशली यदि हम आज, क्योंकि आज हमारा स्थापना दिवस है, एक रिफ्लेक्शन पिछले एक साल का यदि मैं करूं, तो बहुत बड़ा काम इसमें हुआ है। पिछले एक साल में हमने 19.5 मिलियन टन के लगभग फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाया है एक साल में, 7 मिलियन टन के लगभग हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया है, फिशरीज का, लाइव स्टॉक का, और इन सब की यदि वैल्यू मैं करूं तो लगभग 2.25 लाख करोड़ के लगभग एडिशनल वैल्यू मैं बता रहा हूं जो एक साल में हुआ वो है। और इस सबके पीछे अनुसंधान का हाथ है, उसके साथ साथ पॉलिसी और किसान की मेहनत तो है ही है। तो ये गौरवशाली इतिहास है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का।
1: बिल्कुल, आपने जैसे कि बात की शुरुआत में ही कि जो भारत की कृषि है, या कृषि को हम अगर पूरी परिभाषा के साथ देखें तो इसमें फिशरीज है, डेयरी है, लाइव स्टॉक है, हर तरह का क्षेत्र शामिल है। और इसमें भारत के जो प्रगति है उसके आपने बहुत पॉजिटिव आंकड़े और एक समृद्ध देश के आंकड़े आपने प्रस्तुत किए। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन से अहम नवाचार, इनोवेशन या रिसर्च या फिर खेती के लिए बड़े पॉलिसीज रही हैं जिन्होंने भारत की खेती की तस्वीर को बदला है इन बीते कुछ वर्षों में, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है।
2: सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है बीज, और क्वालिटी बीज, हाई यील्डिंग सीड, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड, इसके ऊपर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बहुत काम किया है। हमारा पिछले 10

0: 11 साल का देखें तो 3,000 से ज्यादा क्रॉप वैरायटीज जो हमने रिलीज किए हैं उनमें से ज्यादा वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलियंट है। और इसी को यदि आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में चाहे वातावरण की विषम परिस्थितियां रही हो उसके बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन घटा नहीं बढ़ा है। तो क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने में बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे क्रॉप्स की हो चाहे हॉर्टिकल्चर की हो। उसके साथ साथ में पशुधन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ब्रीडिंग और बाकी मटेरियल इंक्लूड ब्रीड और उनकी तो बात है ही है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके कॉन्टेक्स्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो वैक्सीन पे काम किया है, हमने क्विकली उसको जो रेस्पॉन्ड किया है, चाहे फुट एंड माउथ डिजीज हो चाहे लंपी स्किन डिजीज हो। और मैं मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज हमने फाउंडेशन डे के दौरान एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का वैक्सीन रिलीज किया है जो एक अपने आप में ब्रेक थ्रू है। तो उसके कारण से जो एनिमल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। हमारे प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि चाहे मिट्टी हो चाहे पानी हो चाहे वातावरण हो, उसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। लैंड डिग्रेडेशन जो वाटर से होता था 125 मिलियन हेक्टेयर, वो कम होके 80 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। उसके अलावा सैंड ड्यून स्टेबिलाइजेशन, चाहे आप डेजर्ट की बात करते हैं तो उसपे काम हुआ है। हमने क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट रेजिलियंट विलेजेज बना के जो काम किया और उसका अप स्केलिंग किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। हमारी ऊसर भूमि और इस तरीके की जो भूमि थी डिग्रेडेड, उनका रिक्लेमेशन का बहुत बड़ा काम हुआ है। हमने फार्म मैकेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा काम किया है और फार्म मैकेनाइजेशन का लेवल काफी बड़ा है, क्योंकि अभी लेबर की अवेलेबिलिटी और टाइमलीनेस ऑफ द ऑपरेशन ये काफी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो मैकेनाइजेशन पे बहुत बड़ा फोकस हमने किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ
1: जी
0: बनाना ही काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाना सबसे
1: बिल्कुल
0: इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है।
1: बिल्कुल। अगला सवाल मेरा डॉक्टर मांगेलाल इसी पर ही था कि जैसे ही आपने बहुत से प्रयोगों की बात की, लेकिन प्रयोगशाला से लेकर किसानों तक, खेतों तक उस तकनीक को पहुंचाना ये कितना बड़ा कदम रहा है और कैसे इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया है संस्थान द्वारा, इस पर भी आप प्रकाश डालें। और क्योंकि हम इन दिनों बहुत कुछ ऐसा भी सुन रहे हैं कि भविष्य में जो बीज की तकनीक है वो बिल्कुल बदलने वाली है और जो प्रयोगशालाओं में इस पर शोध भी हो रहे हैं, और हमने पहले भी देखा है कि जो एक जैविक प्रयोग होते रहे हैं फसलों को लेकर, बीजों को लेकर, ये तकनीकें किसानों तक पहुंचे, धरातल पर इनका क्रियान्वयन हो, तो कैसे संस्थान ने बड़ी भूमिका निभाई है इसमें?
0: बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं ये बताना चाहता हूं कि डिस्कवरी और डिलीवरी आइसोलेशन में नहीं हो सकती। और हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो पूरा फोकस है वह है डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम। और डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा फोकस है डिमांड ड्रिवन रिसर्च। हम रिसर्च वो करें जिसकी किसान को जरूरत है, जो किसान मांगता है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में वन वे ट्रैफिक नहीं करते हुए ये हम पार्टिसिपेटरी जो काम करते हैं कि टेक्नोलॉजी लैब में बनती है लेकिन उसका पार्टिसिपेटरी वैलिडेशन इवेल्युएशन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं केवीकेज के थ्रू एक्सटेंशन के थ्रू उसपे काफी काम करते हैं। और डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में होगा कि पिछले साल मई जून में हमने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। हमारे वैज्ञानिकों की 2000 से ज्यादा 2100 से ज्यादा टीम 15 दिन तक खेतों में थी पूरे देश में 730 लगभग जिलों में। और 15 दिन में हमने लगभग 1,35,00,000 किसानों से सीधा संवाद किया। ना उस संवाद से एक तो है कि टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंचाएं, लेकिन दूसरा तथ्य उसका यह भी था कि हम किसान की डिमांड साइड को समझें। और उसी को लेते हुए हमने हमारी रिसर्च में क्या हमें नया करना है, किस चीज की डिमांड है वो कर रहे हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लैब टू लैंड का जो फोकस है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून के बीच में चलाया। देश में लगभग 1,650 से ज्यादा टीम उसपे फिर जुटी। और उसमें सिर्फ ICAR की बात नहीं है, हमारा फोकस है एक देश एक कृषि एक टीम। और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हम कृषि विश्वविद्यालय स्टेट्स का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स का जो अमला है वो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ICAR हमारे इंस्टीट्यूशन सभी लोगों को यूनिवर्सिटीज को मिला के और इसके ऊपर काम किया, क्योंकि इस साल विशेष परिस्थितियां रही है। और उसमें खेत बचाओ में यही है कि फर्टिलाइजर का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है उसको कैसे ठीक किए, बैलेंस कैसे करें, तो उसपे जागरूकता, प्राकृतिक खेती पे देश का बहुत बड़ा एक फोकस है तो उसकी जानकारी किसानों को वो पहुंचाएं। उसके अलावा जो कलनीनो का इफेक्ट है तो कौन सा वराइटीज, कौन सा सीड, कौन सी क्रॉप कहाँ पे, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वो हम उसके अलावा ये भी कर रहे हैं कि जैसे मैं एलनिनो की बात करूं तो हमने 315 जिले जो वल्नरेबल देश के हैं उनके लिए कंटिजेंसी प्लान बना के सारे स्टेट्स के राज्यों के साथ में
1: जी जी
0: डिस्कशन करके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको पहुंचाया है। तो हम एक्सटेंशन की दिशा में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारा

0: एक पूरा एक्सटेंशन का डिवीजन है।
1: क्योंकि आपने अलिनो की चर्चा की, उसी से मेरे मन में सवाल आया कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक चुनौती तो ये रहेगी पूरी दुनिया के सामने कि दूध या खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने रहे। हमारे देश में भी एक इतनी बड़ी जनसंख्या की पेट भरने के लिए दूध उत्पादन की एक बहुत बड़ी टारगेट रहेगा। तो ऐसे में जो फसलें और जलवायु परिवर्तन भी एक चुनौती है, तो क्लाइमेट रेजिलियंट फसलें हों, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो, इन सब की चुनौतियों को लेकर क्या लक्ष्य रखता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने सामने?
0: मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा फोकस है ये क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर ही है। और जो आज भी जैसे हमने वैरायटीज रिलीज की है तो 94% वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज है। हमारा सारा का सारा फोकस क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने पे है और उसी का परिणाम है कि हमारा प्रोडक्शन क्लाइमेट की रिस्क होते हुए भी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। लेकिन मैं क्रॉप वैरायटीज की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे लाइव स्टॉक की ब्रीड हो, चाहे फिश की ब्रीड हो, सभी में क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। नाउ ये तो हो गया ब्रीडिंग वैरायटीज ब्रीड्स की बात, लेकिन हमारा बहुत बड़ा फोकस क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर पे है। यदि आप देखें तो पिछले 15-20 साल में यदि रेनफेड एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है क्लाइमेट चेंज के कारण से, जहां रेनफॉल की अनसर्टेनिटी होती है, डिग्रेडेड लैंड होती है, वहां पे हमने प्रोडक्टिविटी गेन इवन इरिगेटेड एरिया की तुलना में, मैं कंपेरेटिव गेन्स की बात कर रहा हूं, वो ज्यादा किए हैं। तो हमारी क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ी है क्योंकि रेनफेड एरियाज में वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमारे सारे एफर्ट्स हैं कि सोयल का इरोजन कम हो, वाटर का कंजर्वेशन हो, सोयल हेल्थ इंप्रूव हो। अब ये मृदा का स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक इश्यू है।
1: और आखिर में आपसे मैं यही समझना चाहूंगा डॉक्टर मांगीलाल, सस्टेनेबल खेती के मॉडल को लेकर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें हम आपसे थोड़ी सी चर्चा ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी करना चाहेंगे जिसमें जो खादों का प्रयोग है वो सस्टेनेबल तरीके से हो और मिट्टी भी स्वस्थ रहे। तो ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, इसको लेकर भी कितने प्रयास हैं और कैसे इस विषय को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है संस्थान की ओर से?
0: फूड इज मेडिसिन, उस लाइन पे हम काम कर रहे हैं। और हाल ही में हमने ICAR और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया है, सेहत स्टैंड फॉर साइंस एक्सलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत है। और उसमें जो हमारी बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज जो न्यूट्रिशियस होती है उस पर फोकस है, उसका वो क्लिनिकल ट्रायल करके उसको हम आगे कैसे लेके जाएं। लेकिन उसके अलावा जो छोटे किसान है, हमारा जोत छोटा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ फसल ही नहीं हो, उसमें हॉर्टिकल्चर भी हो, उसमें लाइव स्टॉक भी हो, उसमें सेकेंडरी एग्रीकल्चर की एंटरप्राइजेज भी वो सारी होगी, तो एक तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, जो क्लाइमेटिक शॉक्स हैं उनसे रेजिलियंस बढ़ेगा, लेकिन ये वो डाइवर्सिफाइड फूड होगा तो सस्टेनेबल एंड हेल्थी डाइट जो कंट्रीब्यूट कर देगा तो वो ह्यूमन हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज की डेट में जो फूड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के बहुत ज्यादा है, एक तो फूड और एक हमारी लाइफ स्टाइल, वो दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो हम एग्रीकल्चर को हेल्थ के साथ में कनेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं जिसमें ये सारी की सारी चीजें आती है। और इन सब चीजों के पीछे यदि हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी, सॉइल हेल्थ हमारा फाउंडेशन है, तो हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे, पौधे स्वस्थ रहेंगे तो उसमें जो दाने आएंगे उसको खाके मानव स्वस्थ रहेगा, उसका चारा खाके पशु स्वस्थ रहेगा, और यदि सारा स्वस्थ रहेगा तो हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। और इसलिए भारत सरकार का एक कमीशन है वन हेल्थ, तो ये सारा वन हेल्थ की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करता है और हम इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर मांगीलाल जाट, आप कार्यक्रम में जुड़े,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। Countrywide.

0: से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियों चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे दिल्ली चेन्नई मार्ग पर ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की अस्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडिचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडिचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड, दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू नहीं करें। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 5 ओवर में 2 विकेट पर 14 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4%.

0: in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China, and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 kilometers per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 kilometers per hour. More from our correspondent.
1: India's hydrogen train features a 10-coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger trains developed so far. It is powered by 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation, supporting India's transition to sustainable transport. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
0: Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. In a major boost to regional connectivity, the first commercial flight between Daman and New Delhi was flagged off today from the newly built Namo Airport. Union Civil Aviation Minister Kenjarappu Ramamohan Naidu and Union Territory Administrator Praful Patel jointly flagged off the maiden flight. The airport was recently inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. The grand annual Rath Yatra of Lord Jagannath is drawing lakhs of devotees across the country. While the epicenter of the festival is the holy city of Puri in Orissa, the chariot festival is celebrated with immense devotion, vibrant processions and cultural festivities across multiple states. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said that India has achieved a record production of 376 million tons of food grains and 377 million tons of horticultural produce this year, despite challenges posed by climate change. Mr. Chauhan was addressing a press conference in New Delhi. He said the scientists are now going directly to the fields to work alongside the farmers. India and Finland today discussed strengthening economic and financial cooperation, enhancing trade and investment ties, and expanding collaboration in digitalization and emerging sectors. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Finland's Deputy Prime Minister and Finance Minister Riikka Purra in Helsinki. They also explored opportunities to further deepen India-Finland engagement under the India-EU FTA. During the visit to Finland, Mr. Goyal addressed the India-Finland Business Forum in Helsinki. Speaking on the occasion, Mr. Goyal highlighted the shared ambition of India and Finland to double bilateral trade by 2030. In men's cricket, chasing a target of 234 runs set by India, England were 24-2 in 6 overs in second one-day international of three-match series at Cardiff when reports last came in. Earlier, England skipper Harry Brooke won the toss and opted to field. Put into bat, India were bowled out for 233 in 44 overs. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. Akashvani se Vishwadarpan ke saath main Vaishnavi. मुख्य समाचार भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बीमस्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। यूक्रेन की संसद ने सरही कोरित्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और भारत ने कार्डिफ में खेले जा रहे दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बीमस्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बीमस्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीमस्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
3: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
4: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
3: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
2: श्री डोभाल ने कहा कि बीमस्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
3: There is an urgent need for us.
4: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
3: 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में श्रीलंका के रक्षा सचिव एयर वाइस मार्शल संपत थुआंकुंथु से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग योजना में हुई प्रगति की समीक्षा की तथा आपसी हित के क्षेत्रों में रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और फिनलैंड ने आज आर्थिक और वित्तीय सहयोग मजबूत करने, व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और डिजिटलीकरण तथा उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फिनलैंड के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रिक्का पुर्रा के साथ बैठक की। श्री गोयल ने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और उद्योग में सहयोग मजबूत करने के लिए फिनलैंड की राजकीय यात्रा पर हैं। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत फिनलैंड संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के अवसरों पर भी विचार किया। श्री गोयल ने फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री साकारी पोइस्तो से भी भेंट की। उन्होंने निवेश, नवाचार, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप और व्यावसायिक साझेदारी में भारत फिनलैंड सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने AI, 6G, क्वांटम प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज सुबह किए गए हमलों में उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। एक रिपोर्ट।
5: ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हाल के अमरीकी हमलों में 35 से अधिक लोग मारे गए हैं जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पहली बार राजधानी तेहरान के आसपास के इलाकों पर भी हमले हुए। अमरीकी हमलों में सेमनान प्रांत में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन और अंतरिक्ष कार्यक्रम के केंद्र को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना के प्रवक्ता कर्नल इब्राहिम जोल्फागरी ने धमकी दी है कि अगर अमरीका ईरान में पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अमरीका को हुरमूज जलडमरू मध्य में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: अल्जीरिया की राजधानी के पास एक अनाथालय में लगी आग में 11 बच्चों की मौत हो गई और 19 घायल हो गए। अल्जीरिया की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि राजधानी अल्जीयर्स के पूर्वी उपनगर मोहम्मदिया में स्थित 2 मंजिला शिशु देखभाल संस्थान में आज सुबह आग लग गई। बचाव दल ने चलने फिरने में असमर्थ 5 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया जबकि कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। राष्ट्रपति अब्देल मजीद तबोना ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। यूक्रेन की संसद ने आज एक बड़े सरकारी फेरबदल में सरही कोरित्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कोरित्स्की को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। कोरित्स्की मई 2025 से यूक्रेन की राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी नाफ्टोगाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ऊर्जा क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए कोरित्स्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 8वें ओवर में 2 विकेट पर 35 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। यूक्रेन की संसद ने सरही कोरित्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और भारत ने कार्डिफ में खेले जा रहे दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।